एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में सुनिएगा हिंदी में समाचार, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियाँ अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेहे के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्र

0: जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.4 MHz पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

इस संसार में सबसे ऊंचा स्थान माँ का है। माँ के आगे तो भगवान भी नन्हे शिशु के समान अटखेलियां करते हैं। तभी माँ का स्नेह और ममता पाने के लिए प्रभु ने बाल लीला की।

हम प्रभु को पाना चाहते हैं, उनके लिए व्रत, नियम, उपवास सब करते हैं, लेकिन अपने मन को निर्मल नहीं कर पाते, और यही प्रभु को चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अगर प्रभु को पाना है तो हमें अपने मन को निर्मल करना होगा, तभी वो हमें प्राप्त हो सकेंगे।

प्रभु को निश्चल प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। जब हम अपने मन में किसी लिए के लिए कोई दुर्भावना, ईर्ष्या, द्वेष नहीं रखते, तो प्रभु को हमारा निर्मल मन बहुत अच्छा लगता है। और जब हम प्रभु को अपने भाव समर्पित करते हैं, तो मीरा सुदामा को जिस तरह से प्रभु ने दर्शन दिए, उसी तरह हमें भी दर्शन देते हैं।

हमारे तन और मन के बीच ईश्वर की उज्जवल ज्योति विराजमान है, जिसे आत्मा कहा जाता है। ये सांसों का आना जाना हमारे भीतर बैठे आत्मा को सब ज्ञात होता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म भी हमारी आत्मा को पता होते हैं, और जब तक हमारी आत्मा हमारे भीतर विराजमान है तब तक ये जीवन है, और हमें इस जीवन का उज्जवल लाभ लेना चाहिए, प्रभु के नाम का सुमिरन करना चाहिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। FM बैंड 101.4 MHz पर आकाशवाणी का एक कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। संगीत निर्माण सतीश भाटिया का है। प्रस्तुति स्वर रविन्द्र साठे, उत्तरा केलकर और कविता कृष्ण मूर्ति के हैं।

शूर्पणखा से खर दूषण समेत राक्षसी सेना के विध्वंस का वर्णन सुन रावण के अंग प्रत्यंग जल उठे। बालक दिखने वाले दशरथ पुत्रों की वीरता और उनके साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री के होने का समाचार जान रावण सोच में पड़ जाता है। वो जानता है कि देवता, मनुष्य, पशु पक्षी किसी योनि में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उसके सेवकों का भी सामना कर सके। यदि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए स्वयं भगवान ने ही अवतार लिया है तो वो हठपूर्वक उनसे वैर मोल लेगा और स्वयं प्रभु के वाणों से मारा जाकर मुक्ति प्राप्त करेगा। ऐसा निश्चय कर वो रथ पर अकेला सवार होकर वहां चला जहां सागर तट पर मारीच रहता था।

0: श्रोताओं अभी आपने सुना श्री रामचरित मानस गान, संगीत निर्माण सतीश भाटिया का था और प्रस्तुति स्वर रविंद्र साठे, उत्तरा केलकर और कविता कृष्णमूर्ति की थी। FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, विक्रवी संवत 2083 की अधिक ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, तदनुसार 12 जून 2026। तो ये तो बात हुई आज के दिवस की, और आइए अब सुनते हैं ये देशगान, पर उससे पहले सुनिए ये संदेश।
1: मंगल भवन मंगल हारी।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: ये आकाशवाणी है,
4: हर पल आपके साथ,
3: समाचार हो या सदाबहार गीत,
4: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
3: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
4: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
3: आकाशवाणी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये देशगान। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। शाम 6:20 पर गीता संदेश के अंतर्गत सुनिएगा श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 से श्लोक 1 से 3 की व्याख्या। प्रस्तुति डॉ. विनोद कुमार शर्मा की रहेगी। युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:30 पर। गांधी चर्चा सुनिएगा सुबह 7:40 पर। शाम 6:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम अन्नदाता का। और शाम 7 हम लाएंगे कार्यक्रम ग्राम संसार। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गाने नए पुराने का समय रहता है शाम 5:05 पर। कार्यक्रम जय जवान आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। और शाम 7:45 पर आनंद लीजिएगा गैर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गुलदस्ता का।

हरियाणवी लोकगीतों का कार्यक्रम बाजे नगाड़ा आप सुनेंगे सुबह 7:50 पर। सुबह 8:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम सुबह सवेरे का, जिसमें आज आपको जानकारी देंगे विश्व बाल श्रम विरोध दिवस, साथ ही सुनिएगा जानकारी ICC महिला T20 विश्व कप पर। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम स्वरांजलि होगा सुबह 9:30 पर। सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र हम लाएंगे आप सभी के लिए सुबह 10:00, जिसमें आज आपको जानकारी देंगे क्या है संतुलित आहार व इसका महत्व, साथ ही सुनिएगा जानकारी परिश्रम करना कभी ना छोड़ें। रात्रि 8:00 समय रहेगा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का, और रात्रि 10:00 होगा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम चांदनी रातें। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM बैंड 101.4 MHz पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7:00 होंगे हिंदी में समाचार, और 7:05 पर समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां नीति आयोगस्य शासी परिषद उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् यदा विश्वस्य प्रमुखाः अर्थव्यवस्थाः आर्थिक समाह्वानानां सामुख्यं कुर्वन्तः सन्ति तस्मिन् काले अपि भारतस्य विकासयात्रा विश्वम् अविरतं प्रेरयति। तेन ऊर्जाक्षेत्रे वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतीनां स्वीकरणाय आत्मनिर्भरतां प्रति देशस्य संकल्पं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा राज्यानि एकं मण्डलं एकः उत्पादः ODOP तथा रक्षानिर्माणक्षेत्रे निर्यातोन्मुखनीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्यविषयो विकसित भारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 85th नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलतूर भाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य संबद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृहणन् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः चिंतां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्रात् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्रीगोयलः तत्रत्य भैषज उद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे PV सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन युयु इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानंदः तरुण मेनेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
3: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
3: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
3: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
3: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
3: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है। और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
3: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
0: हर पल चलती जाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: हमको यही सिखाती चींटी,
0: हमको यही सिखाती चींटी।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांवों की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सुबह सवेरे के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। आज कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम आपको जानकारी देंगे विश्व बाल श्रम विरोध दिवस के बारे में, साथ ही आपको जानकारी देंगे ICC महिला T20 विश्व कप पर।

और सजी फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में आज आपको जानकारी देंगे क्या है संतुलित आहार और इसका महत्व, साथ ही आपसे चर्चा करेंगे परिश्रम करना कभी ना छोड़े विषय पर।

एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय सुबह के 7:40 हुए जाते हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा।

गांधी चर्चा के अंतर्गत आइए आज सुनते हैं यौन शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचार। हमारी शिक्षा पद्धति में यौन विज्ञान की शिक्षा का क्या स्थान है, या उसका कोई स्थान होना भी चाहिए अथवा नहीं। यौन विज्ञान दो प्रकार का है, एक वह जो काम के आवेग को नियंत्रित अथवा उस पर विजय पाने से संबंधित है, और दूसरा जो उसे उद्दीप्त करने और तृप्त करने से संबंधित है। पहले प्रकार के यौन विज्ञान की शिक्षा बच्चे के लिए आवश्यक है, जबकि दूसरे प्रकार की यौन शिक्षा हानिकारक और खतरनाक है। सभी महान धर्मों ने काम को मनुष्य का सबसे कट्टर शत्रु माना है। गीता के अनुसार क्रोध काम से ही उत्पन्न होता है। हमारा प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है, क्या किशोर वय के बच्चों को प्रजनन अंगों के प्रयोग और उनके कार्य का ज्ञान कराना वांछनीय है? मुझे लगता है एक सीमा तक ऐसा कराना आवश्यक है। वर्तमान में वे यह ज्ञान यहां वहां से चुराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक कुप्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। इसलिए मैं पक्के तौर पर इस बात का समर्थन करता हूं कि किशोर वय के लड़के लड़कियों को अपने प्रजनन अंगों के महत्व और प्रयोग की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस शिक्षा से बच्चों के मन में अपने आप यह बात घर कर जानी चाहिए कि इसका ध्येय काम के आवेग को जीतना और उसका उदात्तीकरण होना चाहिए। अब इस सच्चे यौन विज्ञान की शिक्षा कौन दे? जाहिर है यह शिक्षा वही दे सकता है जिसने अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। विज्ञान की अन्य शाखाओं को पढ़ाने के लिए ऐसे अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं जिन्होंने उनका प्रशिक्षण लिया है और जिन्हें अपने विषय का प्रामाणिक ज्ञान है। इसी प्रकार यौन विज्ञान अर्थात यौन नियंत्रण की शिक्षा देने वाले अध्यापक ऐसे होने चाहिए जिन्होंने इस विषय का अध्ययन किया है और जो स्वयं पर नियंत्रण पा चुके हैं। आज हमारा संपूर्ण पर्यावरण, हमारी पढ़ाई, हमारा चिंतन और हमारा सामाजिक व्यवहार प्रायः कामेच्छा को सहारा देने और उसकी पूर्ति के उपाय करने की ओर प्रवृत्त है। इसके चंगुल से निकलना आसान नहीं है, लेकिन हमें इसके लिए पूरा जोर लगा देना चाहिए। अगर थोड़े से भी अध्यापक ऐसे हों जिन्हें व्यवहारिक अनुभव हो, जो आत्मनियंत्रण को मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य मानते हों और जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति सच्चे और अमिट विश्वास से अनुप्रमाणित हों, तो उनका श्रम बच्चों के जीवन पथ को आलोकित कर सकता है, असावधानों को कामुकता के दलदल में फंसने से बचा सकता है, और जो पहले ही उसका शिकार हो चुके हैं उनका उद्धार कर सकता है। गांधी चर्चा के अंतर्गत अभी आपने यौन शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचार सुने। आइए अब सुनते हैं गांधी जी का यह प्रेम भजन।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा FM बैंड 101.4 MHz पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम बाजे नगाड़ा, जिसमें हमारे आज के कलाकार हैं पवन कुमार गोड़।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी लोकगीतों का कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा, जिसमें हमारे आज के कलाकार थे पवन कुमार गौड़। FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनिएगा हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 8:15 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है, उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है, इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
3: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
5: We signed this year a free trade agreement with Europe.
6: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है।

0: मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट

0: जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। ICC महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. J. Shankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. U.S. President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in

श्रोताओं, आज का गीत संगीत और जानकारियों का कार्यक्रम सुबह सवेरे आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ मैं अनुराधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में आयोजित होने वाला द्विवार्षिक विश्व कप है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा करवाया जाता है। इसका पहला

संस्करण वर्ष 2009 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ था और इसी के साथ ये वर्ष दर वर्ष चलते हुए वर्ष 2026 के लिए अब आयोजित होने जा रहा है। और हमारा आज का प्रश्न यही है कि आपको बताना है ICC महिला T20 विश्व कप 2026 की शुरुआत कहां से हो रही है। हमारे इस आसान से प्रश्न का जवाब दीजिए 94-660-21-336 पर SMS के माध्यम से और बन जाइए कार्यक्रम सुबह सवेरे में हमारे साथी। आप सभी श्रोता जानते हैं कि हमें केवल एक बार SMS करना है और एक SMS में केवल 3 नाम भेजिएगा ताकि हम अपने सभी श्रोताओं के नाम कार्यक्रम में शामिल कर पाए। तो श्रोताओं प्रश्न एक बार फिर से बता दें कि आज आपको बताना है ICC महिला T20 विश्व कप 2026 की शुरुआत कहां से होने जा रही है।

श्रोताओं, आइए अब बात करते हैं आज के दिवस की। आज है 12 जून और 12 जून का दिवस हर वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम की क्रूरता को समाप्त करना, बाल अधिकारों की रक्षा करना, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उन्हें सुरक्षित भविष्य प्रदान करने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। जी हाँ श्रोताओं, वो नन्हे बच्चे जो कल को देश का भविष्य बनेंगे, उनके नन्हे सपनों को हमें ही उड़ान देनी है। और अगर उनका नन्ना बचपन बाल श्रम में कहीं खो जाएगा तो फिर देश आगे कैसे जा पाएगा। इसीलिए हमें सदैव देश ही नहीं विश्व स्तर पर ये सोचना चाहिए कि बच्चे जो हैं उनका भविष्य सुरक्षित रहे, उन्हें बाल रूप में शिक्षा मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और वो भविष्य के सलोने सपन संजो सकें। इसीलिए आज के दिवस को मनाया जाता है और इसको बहुत जागरूकता देने के लिए, बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए और समाज से इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए हमें एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। श्रोताओं, बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए काम करना, उनकी बुनियादी ज़रूरतों को, उनके अधिकारों को विकास देना ही आज के दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है। उनकी शिक्षा और उचित विकास के अवसर प्रदान करना समाज का कर्तव्य है और ऐसा होना भी चाहिए। तो बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराएं, अगर बच्चे बाल श्रम में हैं तो उसका विरोध करें और बच्चों के जीवन को दिशा दें। श्रोताओं, बाल श्रम निरोध दिवस की बात करें तो इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 में बाल श्रम की वैश्विक समस्या पर ध्यान केंद्रित करने और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक प्रयासों को एकजुट करने के लिए इस दिवस की शुरुआत हुई थी। यह दिन सरकारों, नियोक्ताओं, श्रमिक संगठनों और आम जनता को बाल श्रम से छुटकारा दिलाने और इससे प्रभावित बच्चों की सहायता करने के लिए मिलकर काम करने का अवसर प्रदान करता है। श्रोताओं, कई बार गरीबी होती है, मजबूरियां होती हैं, तो माता पिता अपने नन्हे बच्चों को बाल श्रम में धकेल देते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। आज के समय में तो बहुत सी योजनाएं हैं जहां बच्चों के लिए गरीबी से बाहर निकालने के लिए प्रयास किए जाते हैं और इसी को मुख्य ध्यान में रखते हुए गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और जागरूकता की कमी के कारण जब ये समस्याएँ उत्पन्न होती हैं तो इन्हें खत्म करने के लिए भी गुणवत्तापूर्ण तरीके अपनाने की ज़रूरत होती है और यही विभिन्न सरकारों के द्वारा अपनाया भी जाता है ताकि बाल श्रम निषेध दिवस का जो उद्देश्य है उसे सार्थक किया जा सके।

श्रोताओं, नन्हे बच्चों के मन में भी उज्जवल भविष्य के सलोने सपने होते हैं। उन्हें भी अपने बालपन में काम करना नहीं, खेलना, शिक्षा प्राप्त करना, अपने जैसे बच्चों के साथ चीजों को सीखना, उनके साथ समय व्यतीत करना, स्कूल में सिखाए जाने वाली हर एक चीज़ को समझना उन्हें अच्छा लगता है। और जब नन्हे सपने बड़े होते हैं तो फिर हमारे समाज का निर्माण होता है। तो हमें बाल श्रम के इस उद्देश्य को सार्थक करना चाहिए कि बच्चों को बचपन में किसी भी प्रकार का बाल श्रम न करना पड़े, इस बात की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। और अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो हमें उचित कदम भी उठाने चाहिए, क्योंकि हम ही नन्हे बच्चों के सपनों को उड़ान दे सकते हैं।

задумто

श्रोताओं, नन्हे बच्चे होते हैं तो उन्हें बड़े होते होते घर परिवार की स्थिति समझ आने लगती है। ऐसे में जब माता पिता उन्हें बालश्रम या मजदूरी में धकेलने लगते हैं तो उसके लिए उन्हें तब तक पता नहीं चलता कि वे क्या करने जा रहे हैं। उन्हें अपने जीवन की समझ नहीं होती कि अगर एक बार इस चक्र में फंसे तो फिर वे बाहर निकलना मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि जो समय वो बालश्रम में देते हैं वो समय वो जीवन उनकी पढ़ाई का होता है, जीवन बनाने का होता है, जीवन की नींव को तैयार करने का होता है। तो ऐसे समय में माता पिता को अगर शिक्षा और अज्ञान के कारण अपने बच्चों से बालश्रम कराना पड़े तो ये बहुत गलत है। और तभी इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें बच्चों के जीवन को इस अंधकार में जाने से बचाना चाहिए। विश्व बालश्रम विरोध दिवस का यही अवसर है और इसका उद्देश्य भी यही है कि बाल श्रम बाल मजदूरी को समाप्त किया जाए, बच्चों के भविष्य को बनाया जाए, समाज को बच्चों को अच्छा बनाने का एक अवसर दिया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो अपने जीवन को बेहतर बना सकें, अपने जीवन का भरपूर योगदान अपने समाज और अपने देश की भलाई के लिए दे सकें। तो हमें बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कार्य करना चाहिए ताकि उनके अनमोल जीवन को हम आगे बढ़ा सकें।

ने आपसे प्रश्न किया था कि आईसीसी T20 विश्व कप 2026 की शुरुआत कहां से होने जा रही है। इसका सही जवाब है इंग्लैंड और वेल्स। जी हां, इंग्लैंड और वेल्स से आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 की शुरुआत होने जा रही है और इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच एस्बेस्टन बर्मिंघम के मैदान पर खेला जाएगा। और आइए अब आपको बता देते हैं उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमारे आज के प्रश्न का सही जवाब दिया है।

श्रोताओं, आज हमारे पास सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं नाहन हिमाचल प्रदेश से योगी ठाकुर और रीमा ठाकुर। सही जवाब दिया लाडवा से चांद ढींगरा, ईशु और एमी ने। आकली दीवान मध्य प्रदेश से हैं भाई रामलाल चंद्रवंशी और कृष्णा चंद्रवंशी। सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं नागल से इंद्राज, जगूड़ी से रणधीर बांगड़ और युगम। लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से हैं कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी ध्रुव और निशांत ध्रुव। सही जवाब दिया है टिया और कृष्णा ने सोलन हिमाचल प्रदेश से। साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति हैं खमरिया छत्तीसगढ़ से। दरियापुर भाबली महाराष्ट्र से हैं गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। सही जवाब दिया है सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह ने पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं वसीम वली चामोरिया, असलम वली चामोरिया और सरफुद्दीन वली चामोरिया। मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर और रतन माला। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अंबाला से हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, गुरशब्द सिंह राहुल। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा और पूनम वर्मा। सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्या मल्होत्रा हैं अनारकली बाजार जगराव से। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हिमकेश्वर साहू और करण राहुल साहू। भाना ब्राह्मणा वाला नरवाना से हैं मेघराज शर्मा। गांव सांतड़ी से हैं मदन कम्बोज, प्रियांशु कम्बोज और स्मृद कम्बोज। कविता साहू, प्रमोद कुमार साहू हैं कदुआपड़ा जगत सिंहपुर ओडिशा से। बीपी गौतम, सरिता गौतम हैं एटा रोड गंज डिंडवारा उत्तर प्रदेश से। डोंगर गांव से हैं राष्ट्रपाल गजबिये। उत्तम कुमार भक्त, श्वेता भक्त की सुतासु, अर्णवानंद और सत्यमानंद हैं पाकुड़ झारखंड से। भाई श्रोताओं, हमारे श्रोताओं के साथ ना इंसाफी हो जाएगी अगर आप एक SMS में तीन नाम से ज्यादा भेजेंगी और हम तीन नाम ही शामिल करेंगे। रसेड़ा छत्तीसगढ़ से हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी और योगेश कुमार साहू। रावर करनाल से हैं ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। डेर पाटन गुजरात से हैं धीरज वीरवारी जी, आपको भी नमस्कार। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं सतेंद्र कुमार चंसोलिया। सही जवाब दिया है बिहार स्टेट से डब्ल्यू उल्ला बेलदार ने, वली उल्ला बेलदार, सोनम वली बेलदार। और राजा जी नगर बेंगलोर से हमारे श्रोता हैं NR प्रसाद और अखिला प्रसाद। फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, हियांश कुमार चंदन है सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से। गंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद कलीम जख्मी और नजमा बेगम नाज और बेबी फातिमा गाजी। साधुल शहर राजस्थान से हैं रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हैं संतोष खडसे और विनोद खडसे। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। कल्याण मुंबई से हैं किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले और प्रतीक हिवराले। सही जवाब दिया है बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग और विकास गोयल ने। सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं जयश्री और सुनील बेंगलोर से। जिमी शेख और डोगिस शेख हैं फ्रॉम अटलांटा सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। सही जवाब इन्होंने भेजा है जवाहर नगर दुर्ग से हैं RC कामड़े और करुणा कामड़े। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से हैं मोहम्मद फरमान, नरगिस खातून। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा और यश मंसूरी। करनाल से हैं रजनीश बत्रा। गांधीनगर गुजरात से हैं सुरेश राठौर और मंजुला राठौर। नेहरू चौक पैठन से हैं सुरेश जाधव, अनीता जाधव और सोनल प्रसाद जाधव। गांव मुरादगढ़ से हैं रमेश कुमार काम्बोज वंश और भुवेश कुमार काम्बोज। बालोदा छत्तीसगढ़ से हैं दुल्हरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और स्मृति पटेल। नल्लेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं PS नवाकर, निर्मला नवाकर और विशाल नवाकर। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, मेघा आशीष राजा। भाई हमारे एक श्रोता ने सही जवाब तो भेजा है लेकिन अपना नाम और पता उन्होंने नहीं लिखा है।
डोंडी लोहारा से हैं तुषार डोम, आरती डोमेन और खंडवा से निशा जाटव, नरेश मल्होत्रा नीटू, भावना मल्होत्रा और अनिल कटारिया हैं खेल बाजार पानीपत से। सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता और नीलम बत्ता, ताज मंजिल लक्कर बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पंवार और बेनजीर कौसर और मोहम्मद हसनैन पवार, जमशेदपुर से हैं हरजिंदर भाटिया, अंजल भाटिया और सोनू भाटिया। सही जवाब दिया है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, शबनम और असमानास अंसारी ने। नलोई हिसार से हैं सज्जन जांगड़ा, कार्तिक जांगड़ा और वेदांश जांगड़ा। गिरा पलारी छत्तीसगढ़ से हैं वीरेंद्र आशीष साहू। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सही जवाब भेजा है संबलपुर काकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी और सुभाष योगी। गांव चौहलदा बागपत से हैं संजय ढिंगिया और नमन ढिंगिया। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से हैं सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शिंदे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने। प्रवीण भाई गुजराती, जगदीश भाई गुजराती और हीरेन भाई हैं सौराष्ट्र राजकोट से। बाघामुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से हैं प्रज्ञानंद देवांगन, गायत्री देवांगन और यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। कलनगंज खंडवा से हैं कौसर बी पवार, हसीना बी पवार और हिना सईद खोकर। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, ध्वनि छाबड़ा, सानवी छाबड़ा। सही जवाब भेजा है रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया और कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती ने। अरविंद कुमार गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी हैं बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी और राघव। रश्मि झरना है राजकोट गुजरात से। सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और एसके पप्पी हैं जी रादौर से। भारत राम पड़ोती, जयंती पड़ोती और हेमंत पड़ोती काकेर जिला बानबेड़ा मुंगवाल से। शास्त्री नगर बीर शहर से हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल और सोनिया विशाल सपकाल। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से हैं वीना ढींगड़ा, कृतिका विश्व और विजय। गुमथला से हैं राधिका, डॉक्टर आरुषि और डॉक्टर शिवानी। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा और पूजा परिहार। बुडलाना वर्षिंगी से हैं अमोल मानकर, बुडलाना इस्लामपुर से सहदेव दामोदर। गाडगी नगर यवतमाल महाराष्ट्र से हैं लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे। एस एम जावेद हैं गुमला झारखंड से। सरोज सैनी और राकेश सैनी इनके साथ हैं यादवेंद्र सैनी सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से। सही जवाब भेजा है हमारे श्रोता मोहम्मद सईद अब्बासी निगत, परवीन शहनवाज और सरफराज अब्बासी ने ऊपरकोट बुलंदशहर से। जमशेदपुर से हैं जी आपके नाम हो गए रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। निवासा खुपटी से हैं बंधू लोहार पोपलघट और चंद्रकला पोपलघट। कोरासी छत्तीसगढ़ से हैं पवन क्रांति साहू, पंकज साहू और सुष्मिता साहू। सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्या मल्होत्रा अनारकली बाजार जगराव से। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल जी आपके नाम भी हो गए और सुनील पाठक जी के नाम भी हो गए थे। श्रोताओं हमें एक ही बार मैसेज करने की कोशिश किया कीजिए, आपके नाम कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं।

अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं नारायण लाल साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू। सही जवाब भेजा है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े और विजय ताड़े ने। ऑक्सीजन पार्क से जी आपके नाम हो गए थे और सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं सांगली जिले की जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला हुजरे और सबाहत हुजरे। सही जवाब दिया है ग्राम बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा और अंजनी ज्योति वर्मा ने। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से हैं अक्रम हुसैन, प्रिंस बेगम, इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम और आरिज वसीम ने सही जवाब दिया है। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी और कीर्ति भारती। गुमथला से हैं सही जवाब भेजा है ताज मंजिल लक्कर बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पंवार, बेनजीर कौसर और मोहम्मद हसनैन पंवार ने। सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं अश्वनी कराडिया, कृतिका कराडिया और सूबेदार अमरनाथ, रविदास नगर थानेसर सिटी कुरुक्षेत्र से। विक्रम योग भारती, संध्या सैनी, हरमन योग भारती और खुशप्रीत अम्बली हैं गांव फाल संडा जाटान कुरुक्षेत्र से। बांडीवाला फाजिलका पंजाब से हैं ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया और बेबी गरिमा बगड़िया। रादौर से हमारे श्रोता हैं राजकुमार पुजारा, अनीता पुजारा और साहिल पुजारा। सही जवाब भेजा है सुनीता सैनी, रत्नी देवी, पृथ्वी सिंह सैनी ने गाँव फाल संडा जाटान कुरुक्षेत्र से। दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से हैं गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले। सही जवाब दिया है गांव ढानी कुतुबपुर हांसी से रामधारी अवाना, अनाया और ओजस अवाना ने। दंतरीगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा और पारस मणि वर्मा। शनि मंदिर चौक खंडवा से हैं दुर्गा प्रसाद सैनी, गौरव सैनी और अनीता सैनी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हैं फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल और मोहम्मद अकमल। वंडिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू थॉमस, पिंकी और लवली। सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से सुरेंद्र दत्ता, बंटी और शंटी, इनके साथ है लाडी। नंद किशोर घटे, संगीता घटे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा हैं बीड शहर महाराष्ट्र से। बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेन नेताम और कुसुम नेताम। सही जवाब भेजा है मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश वर्मा, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा ने। संदीप मक्कर पिंगला वाला चौक गोराया जालंधर से। छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से हैं मोहम्मद जायद अली सैफी, मोहम्मद जवान सैफी, लीबा मलिक और आबाद खान। सही जवाब भेजा है हमारे श्रोता दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी और सुभाष योगी ने। मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज हैं गिरिडीह झारखंड से। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, निमित और दिशानी। माधीराम सैनी, पूनम सैनी हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से। सही जवाब भेजा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय और अमित कुमार राय ने। ग्राम नागर कोहरा से हैं बाबुल बबलू साहू, जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू। दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और स्मृति पटेल हैं बालोदा छत्तीसगढ़ से। विनोद मूनत और मयंक मूनत हैं बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन मध्य प्रदेश से। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश बत्ता और नीलम बत्ता। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु ने सही जवाब भेजा है। राजेंद्र कुमार मलकीत को, आरती रानी राघव हैं गांव उगाला जिला अंबाला से। सही जवाब भेजा है बालकृष्ण शर्मा और प्रवीण शर्मा, राहुल शर्मा ने नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से। प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा और प्रिंस वर्मा है छत्तीसगढ़ पल्लारी से। कृष्ण कुमार गुप्ता हैं महोबा उत्तर प्रदेश से। सही जवाब भेजा है शनि मंदिर चौक से अनीता कुमारी, आशा कुमारी और डोंडी लोहारा से दीपक चौरसिया ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय सिंह मोहबिया, कविता मोहबिया और कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से हैं योगेश गुजराती और राम सिंह चौहान। तो आप सभी श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद आज के प्रश्न का सही जवाब देने के लिए।

श्रोताओं, आइए अब आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आईसीसी महिला टी20 विश्व कप पर। श्रोताओं, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में आयोजित होने वाला द्विवार्षिक विश्व कप है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा करवाया जाता है। इसका पहला संस्करण वर्ष 2009 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। पहले 3 संस्करणों में 8 प्रतिभागी देश थे, लेकिन वर्ष 2014 से संस्करण में यह संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई और वर्ष 2026 के संस्करण के दौरान टीमों की संख्या बढ़ाकर 12 होने की संभावना है। और प्रत्येक टूर्नामेंट में एक निश्चित संख्या में टीमें स्वतः ही क्वालिफाई कर जाती हैं, जिसमें शेष टीमें, जिसमें महिला टी20 विश्व कप क्वालिफायर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। श्रोताओं, वर्ष 2024 तक कुल 9 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 12 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 6 बार वर्ष ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें 6 बार यानी वर्ष 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 में टूर्नामेंट जीता है, जिसमें सबसे सफल टीम की बात की जाए तो यही है। और इंग्लैंड ने वर्ष 2009, वेस्ट इंडीज ने वर्ष 2016 और न्यूजीलैंड ने वर्ष 2024 में एक एक खिताब जीता है। तो ये जानकारी थी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के बारे में। और अगर आपको और भी जानकारी दे तो हमारे श्रोताओं ने बता दिया कि ये जो मुकाबला है शुरू होने जा रहा है इंग्लैंड से और वेल्स से। जी हाँ, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। श्रोताओं, इसका उद्घाटन मुकाबला जो है वो 12 जून को इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच एजबेस्टन बर्मिंगम में होगा और मेजबान देश इंग्लैंड और वेल्स हैं, जहां ये मुकाबले 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक चलेंगे, जिसमें 12 टीमें खिताब के लिए आमने सामने होंगी और टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो 5 जुलाई को ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। तो ये जानकारी थी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के बारे में। और अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: लत तो लगेगी ही क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
3: ऐसा देश है मेरा हाँ, ऐसा देश है मेरा,
2: ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार को।
3: ऐसा देश है मेरा हाँ, ऐसा देश है मेरा।
4: तो श्रोताओं, ICC महिला T20 विश्व कप में भारत के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। श्रोताओं, जहां ये मुकाबले 12 जून से यानी आज से शुरू होने जा रहे हैं इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में, और भारत की बात करें तो इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ग्रुप ए में शामिल है, जहां अपना पहला मुकाबला वे 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगी, जिसमें हरमनप्रीत कौर इस विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी कर रही हैं और स्मृति मांधना उप कप्तान की भूमिका में हैं। भारत की नजरें अपनी T20 विश्व कप पर टिकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर थोड़ी सी जानकारी आपको और दें तो बल्लेबाज और ऑलराउंडर शेफाली वर्मा, जयजिमा रॉड्रिंग्स, भारती फूलमाली, दीप्ति शर्मा, नंदिनी शर्मा, क्रांति गोड, विकेट कीपर की बात करें तो ऋचा घोष, यास्तिका भाटिका, और गेंदबाजों में श्रीचरनानी और अरुंधति रेड्डी और रेणुका सिंह, श्रेयंका पाटिल और राधा यादव, ये सभी जो हैं ये भारतीय टीम का हिस्सा हैं विश्व कप 2026 के लिए। और टूर्नामेंट के फॉर्मेट की बात करें तो टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 6-6 के 2 ग्रुपों में बांटा गया है। भारत ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के साथ है। वहीं ग्रुप में खत्म होने के बाद इन टॉप टीम 2 टीमों में सेमीफाइनल खेला जाएगा और फिर क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये जानकारी थी भारत की भूमिका के बारे में ICC महिला T20 विश्व कप पर। और कार्यक्रम में फिर एक बार लौट पड़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत। तो हमारी ओर से भी ICC महिला T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: श्रोताओं, हमें जीवन में कुछ भी हासिल करना हो उसके लिए हमें अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। जब हमारे भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति, अपना विश्वास यानी आत्मविश्वास होता है और हम उसका आत्म आंकलन करके यानी अपने आप को जानकर समझकर किसी दिशा में कदम आगे रखते हैं तो फिर हमें वो मंजिल हासिल हो जाती है। और ऐसा ही हमें जीवन में करना चाहिए। हम जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उसके लिए प्रयासरत रहें, दृढ़ निश्चयी रहें और स्वयं का मूल्यांकन करते रहें। तो इन्हीं सभी बातों के साथ अब आज के कार्यक्रम सुबह सवेरे को संपन्न करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति इस अंतिम गीत के साथ। और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बतलाइएगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपकी बात akashvani@gmail.com। जी हाँ श्रोताओं, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें रहता है इंतजार और आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाएंगे ऐसी आशा करते हैं। और सुनिए अब कार्यक्रम में ये गीत और दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ही कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वरांजलि। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं कैलाश खेर को।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम स्वरांजलि में अगली पेशकश अदनान सामी की आवाज में।

0: श्रोताओं, जगजीत सिंह के गायस गीत के साथ ही आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वरांजलि अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वरांजलि FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय सुबह के 9:45 हुए जाते हैं। अब आप सुनिएगा विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।
1: उस फिल्म के निर्देशक और नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुम में से कोई लड़की इस फिल्म में काम करोगी? इस पर श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूंगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्मी पर्दे की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन श्यामा के जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा।

गाने में सिचुएशन ये है कि कार में गुरुदत्त और श्यामा हैं और रूठे हुए गुरुदत्त को श्यामा मना रही हैं। उन्होंने आंखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आंखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का नाम

श्यामा को बचपन से ही एक्टिंग और डांस से बेहद प्यार रहा है। स्कूल के दिनों में लंच टाइम में वे डेस्क पर खड़ी होकर डांस किया करती थीं। बाद में उन्होंने नृत्य और गायन की बाकायदा तालीम ली। घर में फुर्सत के लम्हों में डांस की प्रैक्टिस किया करती थीं। अब सुनिए फिल्म शारदा का ये गीत।

0: श्यामा को फिल्म शारदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म देखने की बड़ी शौकीन रही हैं श्यामा। खास बात यह है कि करीब करीब हर फिल्मों से जुड़ी उनकी याद आज भी ताजा है।
1: जब मैं साइड हीरोइन बनी
2: जी,
1: तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, उसका नाम था तराना
2: जी,
1: जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को अब
2: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निम्मी जी।
0: उस दौर के जाने माने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेल्यूलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। फली मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन

सन 1979 में श्यामा अकेलेपन से घिर गईं और उनके पति फली मिस्त्री उन्हें इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी, वे कदम दर कदम आगे बढ़ती गईं फिल्म संसार में। अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी पांचवें दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सशक्त अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और श्यामा उन दिनों खूब व्यस्त रही फिल्म संसार में।

अभिनेत्री श्यामा ने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, लीड रोल भी किए, चरित्र अभिनेत्री के किरदार को भी बड़ी कुशलता से निभाया और कई फिल्मों में खलनायिका के रोल को भी पर्दे पर उन्होंने साकार किया। बहरहाल सुनिए बरसात की रात फिल्म का ये गाना।

0: मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम किया है कि वो कहते हैं ना कि प्यास बुझ गई
1: जी।
0: उसका नाम है बीमल रॉय
1: जी,
0: गुरुदत्त
1: जी,
0: कारदार साहब, फिर सत्यन बोस, फिर शक्ति सामंता, फिर ऋषिकेश मुखर्जी, फिर एसपी ईरानी, फिर बी मित्रा
1: जी,
0: और फिर आईएस जौहर, वो भी

0: कैरेक्टर थे
1: जी,
0: और किन किन के नाम गिनवाऊं? बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम फिलहाल मुझे याद नहीं है, लेकिन कई ऐसे भी डायरेक्टर आए जिनके साथ वाकई मेरी तमन्ना थी कि मैं काम करूं
1: जी।
0: वैसे तो मैंने बचपन से लेके अभी तक 60 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक आदि बचा होगा बेचारा
1: जिनके साथ काम नहीं किया।
0: अच्छा। जिनके साथ मैंने काम नहीं किया
1: जी।
2: दोस्तों आइए अभिनेत्री श्यामा की मशहूर फिल्मों पर एक नजर डालें। फिल्म मिर्जा साहिबा, खानदान, छोटी बहन, स्वर्ण सुंदरी, भाई भाई, छू मंतर, लाला रुख, दरवाजा, धूप छांव, भागवत महिमा, शबनम, निशाना, रूपलेखा, पतंगा, तकदीर, आसमान, ठोकर, मुसाफिर खाना वगैरह वगैरह। बाद की कुछ फिल्मों में अभिनेत्री श्यामा चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आईं, लेकिन उन फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की बारीकी से दर्शकों को खूब आकृष्ट किया। श्यामा की उस दौर की फिल्में हैं खेल खेल में, सेवक, अजनबी, नया दिन नई रात, हनीमून, सूरज और चंदा, कंगन, जिंदगी जिंदगी, पायल की झनकार वगैरह वगैरह। अभिनेत्री श्यामा चली गईं इस फानी दुनिया से, दे गईं फिल्मी दुनिया को खलिश और सन्नाटा। जब इंसान नहीं रहता तब वो हमारे आसपास और ज्यादा रहता है, उसके न होने का एहसास कचोटता है, दुख देता है। जब सुनी थी श्यामा जी की आवाज तो वे सामने थीं, उन्हें छूकर उन्हें नमन किया था, लेकिन आज सिर्फ उनकी आवाज है, वे नहीं है हमारे साथ।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

श्रोताओं, आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र लेकर हाजिर हूँ मैं अनुराधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोजाना विषय लेकर हाजिर होते हैं जिन पर अपने श्रोताओं से बातचीत करते हैं और जानकारी साझा भी करते हैं, उनकी जानकारी भी सुनते हैं और उनकी पसंद का गीत सुनवाते हैं उन्हें आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से। तो श्रोताओं, आज आपको बता दें, आज हम बात करेंगे क्या है संतुलित आहार और इसका महत्व, साथ ही चर्चा करेंगे परिश्रम करना

कभी ना छोड़े विषय पर। जी हाँ श्रोताओं, एक समय था जब मेहनत और परिश्रम हर व्यक्ति करता था अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, और या फिर घर के काम कहें तो उनमें भी बहुत मेहनत लगती थी। कहीं बाहर जाना है तो उसमें भी हम अपना काम स्वयं करते थे। लेकिन जिस तरह से समय बदला है, तकनीक बदली है, विज्ञान का युग आया है, ऐसे में हमारी बहुत सारी जो मेहनत है ना, परिश्रम है ना, वो कहीं ना कहीं खो गया है। और इसी मेहनत, इसी परिश्रम को हमें फिर से करना है और इसे कभी नहीं छोड़ना है। इसी विषय पर अपने श्रोताओं से आज बातचीत करेंगे। तो भाई, जब तक हमारे श्रोता हमें फ़ोन लगाते हैं तब तक थोड़ी सी बात आपसे साझा करते हैं और फिर कार्यक्रम में आपको गीत भी सुनवाएंगे। तो नए श्रोता जो हमसे आज कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं वो हमें फ़ोन लगाएं 0174-221-322 पर। तो श्रोताओं, जिन्होंने हाल ही में हमें फ़ोन लगाया, कृपया कर फ़ोन न लगाएं, क्योंकि बात नहीं हो पाएगी। आप सभी जानते हैं कि 10 से 15 दिन के अंतराल पर ही हम अपने श्रोताओं के फ़ोन ले पाते हैं। तो जो नए श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमें फ़ोन लगाएं हमारे नंबर 0174-221-322 पर। और श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं परिश्रम करना कभी ना छोड़े विषय पर। तो भाई, आज के समय में जब तकनीक का युग आ गया है, ऐसे में हमारे तन को बहुत आराम मिला है, यानी अब हमारा जो शारीरिक परिश्रम है ना, वो बहुत कम हो गया है। भाई, पहले के समय में हम घर में सब काम खुद करते थे, चाहे घर की साफ सफाई हो, घर का काम हो, बर्तन साफ करना हो, या फिर यूँ कहें कि अपना गेहूँ, अपना आटा भी खुद बनाते थे। और घर के सभी काम जब हम खुद करते थे तो फिर हमारी जो शारीरिक वर्जिश है ना, वो घर पर ही हो जाती थी। ये तो हमने बात की महिलाओं की कि घर के काम करते थे, वे पुरुष भी घर में बहुत सहयोग करते थे। घर का काम, जो कुछ सामान लाना है, ले जाना है, या फिर जो भी परिश्रम था वो स्वयं करते थे। लेकिन आज के समय में अगर हमें कहीं जाना होता है तो उसके लिए भी हमारा कोई शारीरिक परिश्रम नहीं लगता है ना, क्योंकि पहले के समय में साइकिल पर जाते थे तो पर्यावरण भी ठीक रहता था, हमारा तन भी ठीक रहता था, मन भी ठीक रहता था, और हमें चलने के लिए भी आसानी हो जाती थी। लेकिन आज के समय में अगर कहीं जाना हो तो दोपहिया और चौपहिया के बिना तो हमारा काम नहीं चलता है ना, तो फिर हमारा जो परिश्रम है वो पहले नंबर पर तो यहीं छूट गया। और भी बाकी बातें हैं भाई, कार्यक्रम में करेंगे ना, वो तो अभी सुनते हैं कार्यक्रम में ये खूबसूरत गीत।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन से श्रोता कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुड़े हैं?
1: हेलो।
0: हेलो
1: हाँ जी,
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं जय सिंह बात कर रहा हूँ जी, कुरुक्षेत्र से जी।
0: जय सिंह जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए।
0: जी बिल्कुल बढ़िया। तो कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में आपने पहली बार फोन लगाया है?
1: जी नहीं, फोन तो कई बार लगाया जी, लेकिन बात आज हो पाई है जी।
0: अच्छा जी, मतलब ट्राई करते हैं लेकिन आज बात हो रही है।
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है जी, अपनी आवाज सुन के रेडियो
0: जी
1: में।
0: तो जी, जय सिंह जी, क्या काम करते हैं आप?
1: मेरा आइसक्रीम का काम है जी, आइसक्रीम की फैक्ट्री है कुरुक्षेत्र में।
0: अच्छा जी, तो फिर आजकल गर्मी के दिनों में तो आपका व्यापार, आपका काम अच्छा चल रहा होगा।
1: बिल्कुल जी, बढ़िया जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस समय काम पर थे?
1: नहीं, अभी तो मैं ड्राइव कर रहा था वैसे, लेकिन गाड़ी मैंने साइड में लगा रखी है अभी।
0: अच्छा जी, अच्छा। तो गाड़ी चलाते चलाते आपने हमें फोन लगाया, कार्यक्रम

0: यानी साथ साथ।
1: हाँ जी
0: कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: तो आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं?
1: लगभग सभी सुनता हूँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आंखें फिल्म का मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
0: चलिए आपकी पसंद पर ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: थैंक यू जी।
0: जी।

0: हेलो।
1: नमस्कार बहन जी।
0: जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है बहन जी।
0: जी हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दे दीजिए।
1: आवाज कम आ रही आपकी तरफ से।
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: आवाज कम आ रही आपकी तरफ से।
0: हाँ जी, कौन से श्रोता हमारे साथ नमस्ते कुरुक्षेत्र में जुड़े हैं?
1: रणधीर सिंह बांगर गांव जी पुरी से जी।
0: जी रणधीर जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है बहन जी।
0: जो तो इस समय आप अपने काम पर खेत पर थे या फिर घर से ही बात कर रहे हैं?
1: खेत में काम कर रहे, धान की तैयारी कर दी बहन जी।
0: अच्छा जी, तो जमीन तैयार हो गई धान के लिए?
1: हाँ तैयारी लग के करना बहन, जोतने लग गए जमीन को।
0: हाँ जी, तो अभी कल जो बारिश हुई कल परसों में, तो वो जमीन के लिए ठीक रहेगी अब?
1: हाँ ठीक रहेगी बहन जी।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तो गर्मी बहुत थी जी पहले।
0: हाँ जी गर्मी बहुत थी पहले,
1: 2 दिन पहले बहुत गर्मी थी जी।
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल गर्मी से राहत तो मिली है।
1: रात तो तूफान भी आया बहुत ज्यादा।
0: हाँ जी हाँ जी, रात बहुत बारिश थी जी। हाँ। बिल्कुल, तो बताइए रणधीर जी, आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आशिकी का लहजा बहन।
0: ठीक है जी, आपकी पसंद पर आशिकी फिल्म से गीत हम आप तक पहुंचाते हैं।
1: दोस्तों को और श्रोताओं को सबको नमस्कार जी।
0: जी ठीक है, फोन करने के लिए धन्यवाद, आपकी पसंद का गीत आपको सुनवा रहे हैं।
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: जी गुड मॉर्निंग, कौन से श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में?
1: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी छत्तीसगढ़ से योगेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी शुक्रिया।
0: जी योगेश जी, आज हम बात कर रहे हैं जीवन में परिश्रम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी। तो ये तो ऐसी चीज है, परिश्रम के बिना हमारा जीवन यापन भी मुश्किल रहता है।
0: जी
1: हेलो।
0: हाँ जी बोलिए।
1: हाँ हाँ यही बोल रहा था, जीवन के हर एक क्षेत्र में हर कदम पे हमें परिश्रम करने की आवश्यकता होती है।
0: जी बिल्कुल, बिना परिश्रम के हमारा जीवन कभी नहीं चल सकता है ना।
1: जी
0: जी, तो योगेश जी आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: हमें आज गीत सुनवा देंगे, फिल्म है दिल तो पागल है और गीत के बोल है कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना।
0: चलिए आपकी पसंद पर दिल तो पागल है फिल्म से ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन से श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में जुड़े हैं?
1: मैम नमस्कार, श्रीपाल
0: जी
1: गोयल
0: नमस्कार।
1: हरियाणा से। मैम
0: जी श्रीपाल गोयल जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है, मैम आप बताइए कैसे हो।
0: जी बिल्कुल बढ़िया। और आप हमें फोन लगाते हैं उस समय ट्रेवल कर रहे होते हैं ना,
1: हाँ जी मैम, मैं तो
0: तो
1: अभी तो ट्रेन में था, तो ट्रेन में ट्राई नहीं किया, नहीं तो फिर ट्रेन में,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: मैं ट्रेन से उतरने के बाद कॉल किया आपको।
0: ठीक है जी। और कॉल किया, कॉल लग भी गया।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: हाँ जी तो
1: आप आते
0: श्रीपाल,
1: हो तो मेरी लग जाती है।
0: हाँ जी
1: मैम आप आते हो तो कॉल मेरी जो है लग जाती है। हाँ
0: अच्छा जी, तो चलिए बहुत
1: जी
0: अच्छी बात है अगर आपकी कॉल लग जाती है, बात हो जाती है ना
1: हाँ जी। और मैम लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी 28 मई को।
0: जी।
1: हाँ जी
0: जी ठीक है, बिल्कुल आपको याद है और हमारे पास भी लिखित में है कि हमारे श्रोताओं से हमारी कब कब बात होती है ना।
1: जी
0: जी बिल्कुल। तो आज आपने फोन लगाया है, आज हम बात कर रहे हैं परिश्रम करना कभी ना छोड़े विषय पर। आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी मैम,
0: आज हम बात कर रहे हैं परिश्रम करना कभी ना छोड़े,
1: हाँ जी मैम,
0: जिस तरह से आप परिश्रम कर रहे हैं ना अपने आज

0: जीविका के लिए रोज़ाना आते हैं जाते हैं अपने, अभी आप ट्रेन से सफ़र करके अपने काम पर पहुंचने वाले हैं, है ना?
1: जी।
0: तो ये परिश्रम इंसान को, मनुष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में जो काम है, कर्तव्य है, उसे पूरा करना चाहिए। इस पर आप भी कुछ कहना चाहेंगे?
1: हाँ जी मैम, इससे मैम हमारी जो है इसको जो सफलता मिलती है, एक तो
0: जी
1: मतलब जो परिश्रम करते हैं तो जो सफलता जो है जो मिलेगी जी।
0: हाँ जी।
1: और हमारा जो आत्मविश्वास है वो मतलब बढ़ता है
0: जी,
1: और इससे मानसिक शांति और सुखी मिलती है हमको, हमारा मन जो शांत रहता है। मुझे अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो मतलब हमारी किस्मत है वो कभी मतलब जो पलट सकती है, और मतलब ज्यादा मतलब मेहनत करने वालों का समाज भी थोड़ा सम्मान करता है।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं शुक्ल जी।
1: मतलब करते चाहिए
0: जी, बिल्कुल हमें परिश्रम मेहनत कभी नहीं छोड़नी चाहिए, सदैव करती रहनी चाहिए, है ना? तो चलिए बताइए आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैम मूवी का नाम है जिसम, गाना है शिकायत है।
0: चलिए आपकी पसंद पर, आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद
1: जी। धन्यवाद मैम।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन से श्रोता कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुड़ रहे हैं?
1: नमस्ते मैडम, मैं गांव जालिया तालुका पालीताना जिलो भावनगर गुजरात से माधु भाई चौहान बात कर रहा हूँ।
0: जी माधव भाई चौहान जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ बेन
0: जी। तो क्या कर रहे थे इस समय आप, कार्यक्रम सुन रहे थे?
1: मैं खेत में पानी पिला रहा हूँ और कार्यक्रम सुन रहा हूँ।
0: चलिए, खेत में काम कर रहे हैं आप?
1: जी हाँ।
0: पानी चला रहे हैं या पशुओं को पानी पिला रहे हैं?
1: पानी पिला रहा हूँ कपास को।
0: अच्छा जी, तो यानी आपने कपास की खेती की है अभी?
1: कपास की खेती चालू है
0: जी। तो अभी कितना समय लगेगा कपास में फूल आने में या फिर आ गए?
1: ना ना, अभी तो रोपने की शुरुआत है।
0: अच्छा जी,
1: वावणी चल रही है हमारे यहाँ तो।
0: हाँ जी,
1: दिवाली पर कपास आ जाएगा।
0: अच्छा जी, तो आप अभी गुजरात से बात कर रहे हैं, गुजरात का मौसम कैसा है?
1: गुजरात का मौसम तो मैडम गर्मी बहुत पड़ रही है सारे
0: जी। तो बरसात बारिश नहीं हुई अभी?
1: बारिश नहीं हुई है
0: जी। तो आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, कैसे लगते हैं आपको हमारे कार्यक्रम?
1: आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, सुबह सवेरे आता है वो भी मैं सुनता हूँ
0: जी।
1: और हमारे एक रेडियो मित्र है धीरज भाई रबारी, उन्होंने मुझे बताया था
0: जी,
1: और आपका नंबर भी उन्होंने दिया था कि प्रोग्राम लाइव आता है, तो मैंने आज पहली बार कॉल किया और लग दिया
0: जी। तो बहुत अच्छी बात, आपको कैसा लग रहा है फिर पहली बार ही आपने फोन लगाया और पहली बार में आपका फोन लग गया?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, यही हम चाहते हैं कि हमारे जो रोजाना लगभग हमारे श्रोता हमें फोन लगाते हैं, वो हमें फोन न लगाकर हमारे दूसरे नए श्रोताओं को हमसे जुड़ने का मौका दे, है ना? जी हेलो।
1: हाँ जी बोलिए।
0: जी बोलिए।
1: मैं 2000 से मैडम रेडियो सुन रहा हूँ, मेरा 35 साल की उम्र है
0: जी,
1: मैं 2000 से रेडियो सुनता हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, लंबे अरसे से आप रेडियो से जुड़े हैं ना, तो बताइए आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मुझे खुदा गवाह का सुनना था मेरे पास।
0: चलिए, आपकी पसंद पर खुदा गवाह फिल्म से गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।
0: जी।

0: विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं परिश्रम कभी ना छोड़ें। जी हाँ, क्योंकि परिश्रम करने वाले को ही सब हासिल होता है।

किसी ने ठीक ही कहा है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जी हाँ, अगर हम किनारे पर बैठे रहेंगे तो अगर हम पानी में उतरने से डरते रहेंगे तो हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं। यानी हम जीवन को बिना कठिनाइयों के, बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के कभी जी नहीं सकते, कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। और अगर हमें भी अपने जीवन में सफलता चाहिए तो हमें मेहनत करनी ही होगी, फिर चाहे वो हमारे करियर में, पढ़ाई लिखाई में हो, या फिर हमारे घर में हो, या फिर हमारे व्यापार में हो, गृहस्थी में हो, परिवार में हो, घर के परिवार जन के साथ हो, हमें कहीं भी बिना मेहनत के तो जीवन जिया ही नहीं जा सकता। और आज के समय में जो मेहनत है, परिश्रम है, वो कम होता जा रहा है, लेकिन हमें अपने जीवन की मेहनत को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में मेहनत से ही सफलता मिलती है। तो श्रोताओं, परिश्रम करना जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि परिश्रम करने से ही हमें सब हासिल होता है। आपने देखा ही होगा कि जो बच्चे परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत उनका साथ देती है। और अगर ऐसे ही कहें कि कई बार हमें अपने व्यापार, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए हम कई बार असफल भी होते हैं, लेकिन असफलता एक दिन सफलता में ज़रूर बदल जाती है, हमें हमारी मंजिल मिल जाती है। इसीलिए हमें जीवन में सदैव परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और श्रोताओं, परिश्रम करने के लिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए चाहिए होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है और इसका क्या महत्व है, ये भी हम अपने श्रोताओं को बताएंगे, लेकिन अभी सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

0: लत तो लगेगी ही, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
1: ऐसा जैसे है मेरा, ऐसा जैसे है मेरा,
0: ऐसा देश है मेरा, हर दूसरी और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा, हर दूसरी और चौथे शनिवार को।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: श्रोताओं, हम बात कर रहे थे संतुलित आहार की। संतुलित भोजन वो है जिसमें शरीर का समुचित विकास और स्वस्थ रहने के लिए सभी आवश्यक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर और पानी उचित मात्रा में मौजूद हो। संतुलित आहार जो है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सभी हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं, हमारी मांसपेशियों का विकास करते हैं, उनकी मुरम्मत करते हैं, ऊर्जा बनाए रखते हैं हमारे शरीर की, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और सभी अंगों को स्वस्थ रखने के लिए योगदान देते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत रखने, दुरुस्त रखने और शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने की कोशिश करते हैं। श्रोताओं, संतुलित आहार लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है, हमें गंभीर बीमारियों के होने के जोखिम को कम करता है और हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने भोजन में अनाज, दालों, फल, सब्जियाँ, दूध, दही, इन सबको शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे हमें संतुलित भोजन मिलता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है तो हमें संतुलित भोजन ज़रूर लेना चाहिए। तो भाई, अब इसके साथ ही हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए जिसमें हमें अपनी डाइट में अनाज, दालें, फल, सब्जियां लेनी चाहिए। श्रोताओं, हमें बाहर के खाने से बचना चाहिए जिसमें प्रोसेस्ड फूड, अत्यधिक चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थ लेने से हमें बचना चाहिए। श्रोताओं, मौसम चाहे गर्मी का हो या फिर कैसा भी, हमें प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि तरल पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हमारे शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालते हैं और हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं। तो भाई, इसीलिए हमें संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि संतुलित आहार हमारे जीवन की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। श्रोताओं, संतुलित आहार कैसे लें, इसमें आप अपनी डाइट बना सकते हैं कि आपको सुबह के समय क्या लेना है, दोपहर के समय क्या लेना है, या दिन में अगर आपको सुपाच्य भोजन करना है या अपने शरीर की ऊर्जा को बनाए रखना है तो दिन में 3 की जगह हमें 5 बार यानी थोड़ी थोड़े समय पर कुछ 2-2 घंटे के अंतराल पर कुछ लेना चाहिए। और हमें इसमें अपने आयु वर्ग का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारी आयु बच्चे हैं अगर, तो उन्हें शरीर को भाग दौड़ कूद करने में वो शरीर की ऊर्जा को जल्दी खपत कर लेते हैं तो उन्हें कुछ कुछ देर के बाद खाना चाहिए होता है। लेकिन ऐसे में आजकल के बच्चे जो हैं वो घर का खाना या दूध लेने से कतराते हैं, तो उन्हें माता पिता को उन्हें समझाना चाहिए कि शरीर के लिए इन तत्वों की क्या ज़रूरत है और उन्हें घर का बना साफ सुथरा भोजन करने की ही आदत डालनी चाहिए। बाहर के भोजन, पैकेट फूड पर बच्चों को कम देना चाहिए ताकि जो उसमें अधिक अत्यधिक चीनी

नमक है वो उनके शरीर को किसी तरह का नुकसान न पहुंचा सकी। तो ये जानकारी हमने आपको दी संतुलित आहार के बारे में, क्योंकि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार की बहुत आवश्यकता होती है। और जैसा कि हमने कार्यक्रम में आपको बताया भी कि हमें परिश्रम करना चाहिए, तो भाई अगर हमारे शरीर की ऊर्जा बनी रहेगी, शरीर ताकतवर बना रहेगा, तभी तो हम परिश्रम कर पाएंगे ना। और परिश्रम करने के लिए हमें अपने शरीर का, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही चलते चलते फिर हम आपको, आपसे एक बार यही कहना चाहेंगे कि हमें अपने जीवन में मेहनत और परिश्रम ज़रूर करना चाहिए। फिर चाहे घर के कामों में वो परिश्रम हो, कहीं आना हो, जाना हो, या फिर घर में पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठ कर भाई गपशप भी करनी हो, उसके लिए भी हमें अपना समय निकालना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। तो शरीर को चलाने के लिए हमें अपने काम, अपनी दिनचर्या को बनाए रखना चाहिए। सुबह जल्दी जागना चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी जागने से हमारे शरीर की ऊर्जा बनी रहती है। और अगर हम बात करें परिश्रम की, तो भाई अगर हम सुबह जल्दी जागेंगे तभी तो हमारे पास परिश्रम करने के लिए भी सही समय मिल पाएगा। भाई श्रोताओं, हमारी दिनचर्या बहुत बदल गई है, जिसमें हमारे पैदल चलने का जो परिश्रम है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, उसे हमें फिर से बनाना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि हमें साइकिल को चलाना चाहिए, क्योंकि साइकिल चलाने से हमारे काम भी जल्दी हो जाते हैं और हमारे आसपास का जो काम है ना वो आसानी से हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे कदमों को बढ़ाकर ही हम अपने जीवन में परिश्रम को फिर से एक बार वापस ला सकते हैं। जब हम छोटे छोटे काम स्वयं करने लगते हैं तो हमारे जीवन की ऊर्जा बनी रहती है। इन्हीं सभी बातों के साथ अब आज के कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र को संपन्न करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हमारा पता है आपकी बात akashvani@gmail.com। दीजिए अनुमति, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनिएगा विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ताजमहल फिल्म की इस कव्वाली से। मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं। साहिल के बोल, रोशन का संगीत।

0: पंकज उदास की आवाज में ये गजल अभी आपने सुनी। कलाम था कैसर उल जाफरी का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य जवानी।

0: मिताली मुखर्जी के स्वर में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे सुजला,
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। आइए अब सुनते हैं एक फिल्मी गीत जगजीत कौर की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत, फिल्म शगुन।

यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे

लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे सजदा एल्बम से ये गजल। ये है मीनू पुरुषोत्तम की आवाज, कलाम सरदार अंजुम का।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सदमा फिल्म के गाने से। सुरेश वाटकर की आवाज है, गुलजार के बोल, इलैया राजा का संगीत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

तारे जमीन पर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में प्रसून जोशी के बोल थे। शंकर एहसान लॉय का संगीत था। नमकीन फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

लैला मजनू, शीरी फरहा, ही रांझा।

नाम है मोहब्बत की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए

जमाने को दिखाना है। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन की आवाज में, संगीत भी राहुल देव बर्मन का था और रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की। नमकीन फिल्म का गाना सुनिए आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत है।

patit tatak bagun pera.

0: अम्मा सर पे टोकरी लिए सारा दिन गांव में घूमा करती है, गोबर जमा करती है, उपले थापती है, सुखाती है और जाके गांव में बेच आया करती है। बदलते हुए वक्तों से बड़ी शिकायत है उसे, गांव से तो क्या, गईयों से भी शिकायत करती है।
1: इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं इस कार्यक्रम के लिए। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा है इस बात में है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिए जाए। और हाँ, अगर हमने गाने चुने हैं और आपने, कई श्रोताओं ने वही गाना लिखा है, तो हम अपने गाने बदलकर आपके वाले गाने भी बजा सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम आप सुनेंगे ही, और ध्यान से ज़रा आज की इबारत पढ़ लीजिए, हम सुना देते हैं, सुन लीजिए। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है, फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा, क्या यही खता है? हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा, फिर कब मिलोगे, इस बात का वादा करो। एक बार जो सनम से दिल लगा, तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना, उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी न रह जाए, गले से लग जा, जिंदगी में शायद साथ इतना ही था। और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। वैसे बहुत सारे श्रोताओं की ओर से गाने सुझाए गए हैं, लेकिन हम कुछ ख़ास शब्दों से पूछ रहे हैं कि कौन से गाने आपके जहन में आ रहे हैं। दिल शायर बन गया, इसका गाना बताइए, और बताइए कि दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा, और बताइए कि संभालने वाली जो बात है, यहाँ पर कहीं संभालने की बात आई है, उस पर कोई गाना बताइए। क्योंकि इन शब्दों पर कुछ गाने कम हैं, इसलिए मैंने यहाँ जानबूझ कर रखा है कि देखें आपको याद आता है कि नहीं।

से कि एक बार जो सनम से दिल लगा, यहाँ पर कौन सा गाना याद आया है। अब चलिए गीतों के माध्यम से एक कहानी भी सुनवा देते हैं। उस कहानी से जुड़ी हुई कौन सी कहानी आपको याद आती है ज़रा बताइए। बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी आपने। सुनिए ये गाना और याद कीजिए कोई कहानी या फिर कोई गाना या फिर कोई अपनी ज़िंदगी की कोई घटना जो यहाँ विविध भारती के फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं। तो बताइए कहानी और आप भी कोई इबारत लिखकर भेज सकते हैं

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास का परिदृश्य बदल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है।
1: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
2: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
1: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
2: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
0: उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से मदद कर रही है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयास सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर आधारित हैं, जिससे ऐसा माहौल बनाने में मदद मिली है जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकें तथा राष्ट्र निर्माण में और मजबूती से योगदान दे सकें। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में भारत की नारी शक्ति को अपनी पहचान बनाते हुए देखकर खुशी जाहिर की। संस्कृत का एक श्लोक साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी असाधारण प्रतिभा और कौशल से भारत माता का गौरव बढ़ा रही हैं। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को द्वारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने की प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें।

0: आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में हरियाणा के विकास से जुड़े कई मांगें रखी। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि हरियाणा को उसकी महत्वाकांक्षी औद्योगिक विकास योजना के तहत विकसित किए जाने वाले पहले 50 औद्योगिक पार्कों में शामिल किया जाए। उन्होंने हरियाणा को सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने की भी मांग की। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने और एआई वैश्विक क्षमता केंद्र के विकास के लिए एक विशेष केंद्रीय पैकेज देने का अनुरोध किया। उन्होंने औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, सेक्टर विशिष्ट औद्योगिक पार्कों, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की भी मांग की। उन्होंने राष्ट्रीय नवाचार एवं अनुसंधान फंड के तहत हरियाणा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप अपना विजन दस्तावेज 2047 तैयार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
1: बन गया जो कहानी बन गई और वो ख्वाब जो इस गाने में आपने सुना, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, पुराना ख्वाब। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है, प्रेम प्रसंगों के पर्याय बनी इबारतों की श्रृंखला में आज की कड़ी प्रमाणित कर रही है कि जीवन के सफर में सिर्फ मोहब्बत ही एकमात्र विकल्प है जो रिश्तों को आबाद करने में सक्षम है, चाहे वो प्रेमी दिलों की हो या आपसे रिश्तों की, प्रेम ही शाश्वत है। बहुत पते की बात आपने लिखी है कि अगर इस दुनिया से प्रेम हटा दिया जाए तो दुनिया कैसी हो जाएगी, एकदम बेरंग, सूनी, उदास। प्रेम के सहारे ही तो रिश्ते बनते हैं, प्रेम के सहारे ही तो परिवार बनता है, समाज बनता है। ये सृष्टि की रचना ही प्रेम से हुई है। चलिए अब छोटी सी मुलाकात, ये फिल्म का नाम है, सुनिए गाना और बताइए गीतकार का नाम।

छोटी सी मुलाकात फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थीं। अभी पिछले दिनों ये खबर आई थी कि गायिका सुमन कल्याणपुर नहीं रहीं, तो कितना दुख पहुंचा था, कितना अवसाद हुआ था हम सभी को जितने उनके चाहने वाले हैं। सचमुच एक अलग तरह की आवाज़ थी। अब हम आपकी टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल प्रेम की जगह मोबाइल ने ले ली है, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मोबाइल में रहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत से सालों से मेरी तुझसे पहचान है आपके लिए। वैसे एक इस गाने में ये लाइन भी आती है, अनगिनत सालों से मेरी तुझसे पहचान है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि कब किससे पहचान हुई, कौन सी पहचान रिश्ते में बदल गई, ये हमारा सवाल है। कोई दोस्त मित्र प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी या भाई बहन का रिश्ता बन गया एक पहचान से। कई बार हम कहीं जाते हैं घूमने, कुछ अजनबी लोग मिलते हैं, वहाँ मुलाकात होती है, तो कुछ रिश्ते बन जाते हैं। कई बार दोस्ती का रिश्ता बन जाता है, भाई बहन का रिश्ता बन जाता है, प्रेमी प्रेमिका का। तो आप ये भी बता सकते हैं अपनी यादें साझा करते हुए। एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में नानी जी सुनाती थी कहानी, जब हम गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाते थे, खूब लंबी लंबी कहानियाँ, दादी और दादाजी बहुत प्यार करते थे। एक श्रोता ने लिखा है, नवी कक्षा में था जब मैं NCC कैंप गया था, रोज़ाना ही जूनियर से कुछ न कुछ अफसर लोग हमसे पूछते रहते थे, लेकिन एक दिन कहानी किस्सों की बात हो रही थी तो सर ने पूछा, कल्चरल प्रोग्राम का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सुबह परेड पर 4 बजे आना है ग्राउंड पर, लेकिन मेरी नींद लग गई, बार बार सीटी बजाने के बाद भी नहीं उठ पाया, तो जो हमारे सीनियर थे उसने हमारे टेंट में आकर खूब पिटाई हुई और उसके डर से 2 दिन तक बीमार होने का मैं नाटक करता रहा। भाई नाटक क्यों किया, पिटाई भी ठीक नहीं थी, लेकिन ना कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक अनुशासन तो होना चाहिए छात्र जीवन में। एक श्रोता ने जानकारी दी है, एक छोटी सी मुलाकात 1967, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी सुमन कल्याणपुर, और तुझे चाहा तुझे पूजा, ये तो गाने के बोल हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कोई माने या ना माने, जो कल तक थे मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। बहुत सारे गानों की इबारत हमारे श्रोता लिख रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप इन्हीं इबारतों से आप कोई और पंक्ति रच सकते हैं, कोई कविता रच सकते हैं। हो सकता है आपकी रची कविता एक दिन आपको कवि बना दे, कहानीकार बना दे। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की कहानी, एक चिड़िया की कहानी जो अपने दाल की चोरी होने पर सभी से गुहार लगाती है और अंत में वो जीत जाती है। ये कहानी बाबूजी हम लोगों को सुनाया करते थे और मैं भी अपने बच्चों को सुनाती हूँ। क्या बात है भाई, गानों से देखिए कितनी सारी बातें याद आ गई। इसलिए गाने जब हम सुनते हैं तो गानों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत सारे शब्द हमें यादों में ले जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिर कब मिलोगे, ये गाना हमें बहुत पसंद है। और बहुत सारे श्रोताओं की ओर से फरमाइश आई है भरोसा फिल्म के गाने की, वो दिल कहाँ से लाऊं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो इबारत है उनमें वो शब्द होने चाहिए। तो देखा कि उनमें ये शब्द है, तो चलिए वो गाना हम सुनवाते हैं। फिल्म है भरोसा। कलाकारों के नाम ज़रा बताइए कि पर्दे पर कौन गा रही हैं, कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना। वैसे पार्श्व गायिका हैं लता मंगेशकर। गीतकार संगीतकार का नाम आप बता सकते हैं, अगर आप ये नहीं बता सकते कि कौन है अभिनेत्री। हीरो का नाम भी बताइए आप ही, जरा जल्दी टाइप कीजिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

भरोसा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे रवि का संगीत था, और हमने पूछा था पर्दे पर कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना। अभी तक श्रोताओं की ओर से जवाब नहीं मिला। आशा पारेख और गुरुदत्त हैं इस फिल्म में हीरो। देखिए साथ साथ पहेलियों के जवाब भी देते चलिए, क्योंकि इबारत के साथ साथ पहेलियाँ भी शामिल हैं कि हम आपसे पूछते हैं जो सवाल, आपके जवाब का रहता है हमें इंतज़ार, और हम बाकायदा कमेंट को न्यूएस्ट कर देखते हैं कि नए कमेंट कौन आ रहे हैं। बस टिप्पणी साझा करके आप बैठ गए रेडियो सुनने, नहीं जी, हम आपको बिल्कुल साथ में लगा के रखते हैं, संलग्न रहें आप, ये हमें अच्छा लगता है जानकर। बहरहाल एक श्रोता की टिप्पणी पढ़ते हैं। कुछ मुलाकातें दिल में ऐसे ठहर जाती हैं जैसे माथे पर गिरी बारिश की पहली बूंद, हम उस पल को कभी भूल नहीं पाते, गाकर लिखकर रोकर हम उन लम्हों को फिर मिलने की चाह में याद करते रहते हैं। प्रेम की सारी मुलाकातें, सारी दूरियां, सारी शिकायतें, उसे एक लम्हे की याद में एक रुदन बन जाता है कि किसी को चाहना क्या एक सज़ा है। ज़िंदगी में चाहे कुछ लम्हों का साथ ही क्यों न हो, जाने वाले कभी नहीं जाते, वे रह जाते हैं कुछ अधूरी बातों में, मुलाकातों में और उन जगहों में जहां से कभी हम साथ गुजरे थे। और आपके दिल में, दिल वो जगह है जहां से कभी कोई जाता नहीं, हमेशा टिका रह जाता है। आप चाहें भी कि फला व्यक्ति दिल से चला जाए, लेकिन नहीं, मुमकिन नहीं होता है। तो अब चलिए यादों के गलियारों में चलते हैं। कौन सी यादें आपके जहन में दस्तक देती हैं ये बताइएगा आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai ये टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब आ रहा है गाना उमर कैद फिल्म का। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं इस बार सही कौन जवाब देता है। और यादों के गलियारों में जाकर कौन सी याद आई है एक लाइन में बताइए।

0: यादों के नाम बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम यहाँ नई जगह रहने आए तो एक प्यारी सखी मुझे मिली और हमने बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन हमारा साथ बहुत कम समय के लिए था, कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। एक श्रोता ने लिखा है कि हम साथ हैं आपके, काम बाद में करेंगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और एक श्रोता ने लिखा है कि वो दिल कहाँ से लाऊं, बहुत मार्मिक है गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि आशा पारिक थी उस फिल्म में जिसका आपने पूछा था, भरोसा के लिए लिखा है। और एक श्रोता ने, क्या कई श्रोताओं ने लिखा है, दिल आशायर गमाज नगमा। हो सकता है इस पूरे प्रोग्राम में आपको ये गाना मिल जाए। बस ये बताइएगा कि आपको अगला गाना कौन सा आ सकता है, ज़रा ये भी तो अंदाज़ा लगाइए। देखते हैं कि आप, वैसे गाने तो आपने बहुत सारे लिखे हैं जो हमारे पास हैं, जो मतलब हमारी और आपकी पसंद आज बहुत सारी मिल रही है। और ये जो वो दिल कहाँ से लाऊं, ये तो हमने आपकी पसंद पर ही सुनवाया। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही गंभीर गाना है वो दिल कहाँ से लाऊं, सुपर हिट सॉन्ग है। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म भरोसा के नायक और नायिका हैं गुरुदत्त, आशा पारिख। और भरोसा के गाने के लिए बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियाँ आई है। एक श्रोता ने लिखा है 1970 में खुले ग्राउंड पर शाम को हम अपने मामा मामी के साथ ये फिल्म देखी थी। और एक श्रोता ने जानकारी दी है आशा पारिख, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि, फिल्म भरोसा। अब ज़रा कुछ और टिप्पणियाँ भी पढ़ दी जाएँ। एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत का फल मीठा होता है, पिताजी प्यासे कौवे की कहानी सुनाते थे, बाद में ये किताब में पढ़ा मैंने, मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्यासा कौवा वाली कहानी। और आप में से किस किस लोगों ने सुनी थी, किन किन लोगों ने, जरा बताइएगा। और जब प्यासा कौवा की कहानी सुनते थे तो आंखों के सामने क्या चित्र बनता था, वो भी बता सकते हैं। अब तो सामने आपके टेलीविज़न पर देख लेते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख लेते हैं, लेकिन तब वो काल्पनिक चित्र बना करता था और अब किताबों में चित्र बने बनाए आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत मैंने अपने डायरी में लिखा था और गाती भी थी, ये 1990 की बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारे साथी की बात याद आई, अरे फिक्र क्यों करती है, मैं हूँ ना, पर अफसोस वो अब नहीं है, ओफ। एक श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं वादा करना जितना आसान है उसे निभाना उतना ही मुश्किल, जब कोई वादा टूटता है तो सिर्फ एक बात अधूरी नहीं रहती बल्कि किसी का अटूट विश्वास कांच की तरह बिखर जाता है। वादे अगर कांच के हों तो टूट जाते हैं और अगर कच्चे धागे के हों तो छूट जाते हैं। क्या बात है भाई, ये वादे वाली बात आपने बेहतरीन लिखी है। अब कन्यादान फिल्म का ये गाना,
1: चेहरे से हटा सकता नहीं,
0: हीरो हीरोइन का नाम आपको बताना है,
1: दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा सकता नहीं, कितनी दिलकश

0: कन्यादान फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है आशा पारिख और शशि कपूर। जरा उन श्रोताओं के लिए जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर इस वक्त उपलब्ध नहीं है लेकिन रेडियो सुन रहे हैं, उनके लिए हम इबारत दोहरा देते हैं। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है। फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा, क्या ये खता है? हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा, फिर कब मिलोगे इस बात का वादा करो। एक बार जो सनम से दिल लगा तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना, उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी ना रह जाए, गले से लग जा। जिंदगी में शायद साथ इतना ही था और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं। इस इबारत के साथ आप भी कोई इबारत लिख सकते हैं, हो सकता है आपके भीतर छुपी प्रतिभा परवान चढ़े और एक कवि हो जाएं आप, एक कहानीकार हो जाएं। बहरहाल ये जो दिल शायर बन गया, इसको लेकर बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और एक गाना चुना है हमारे श्रोताओं ने, गैम्बलर फिल्म का, दिल आज शायर है गम आज नगमा। तो चलिए यही गाना हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन ज़रा बताइए कौन है हीरो, हीरो का नाम बूझना है आपको।
1: गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम।
0: गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

0: देंगे।
1: गैम्बलर फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, नीरज की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया देव आनंद, और गीतकार संगीतकार का नाम कुछ श्रोताओं ने गलत भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बचपन में सबसे पहले कहानी सुनी थी चिड़िया और कौवे की। चिड़िया मोम से घर बनाती है, कौवा गोबर से घर बनाता है। बरसात में कौवा का गोबर का घर बह जाता है, और भीगा कौवा चिड़िया के मोम के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन घर छोटा होता है और चिड़िया अपने छोटे चूजे को खाना खिलाने में व्यस्त होती है, इसलिए वो कौवा को अंदर आने नहीं देती। इस तरह की कहानी

कहावतें बहुत प्रचलित है और हम सब ने अपने अपने बचपन में सुनी है। दरअसल वो जो कहानी वाला बचपन था कहीं गुम हो रहा है। अब कहानियों के बजाय मोबाइल वाला बचपन है। अब बहुत सारे मम्मी पापा को कहानियाँ याद ही नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि कोई कहानी वाली किताब बताओ ना जो हम पढ़कर सुना दें, या कोई वो बताओ, लिंक बताओ जहाँ हम उसे लगा दें तो सुनते सुनते सो जाए। भाई वो लिंक वाली कहानी का वो सुख नहीं है जो माँ अपनी ज़बान से मॉड्यूलेट करके स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ सुनाती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर ये वक्त बहुत जालिम है, मिलता ही नहीं। वक्त को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कीजिए और लिख डालिए। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना, रिश्ते को पवित्र रखना है और बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कर कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आप अपनी बहुत अच्छी दोस्त याद आ गई इस प्रोग्राम के साथ और अपना प्यारा पुराना घर याद आ गया जहां मेरी दादी और दादा रहते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत के साथ मैंने भी कुछ लिखा है कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मशहूर शायर साहिल लुधियानवी की पंक्तियाँ प्रेमियों के दिलों की हालात बयां करती हैं कि हर प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं होती, प्रेम कहानी करवट लेती और उसमें विरह उत्पन्न हो जाता है। वो प्रेम जीवन भर नदी के दूसरे छोर की तरह साथ साथ चलता है, महसूस भी होता है किंतु ता उम्र पहले छोर से मिल नहीं पाता। भाई प्रेम के साथ दर्द तो जुड़ ही जाता है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो मीराबाई क्यों कहती कि जो मैं ऐसा जानती नगर ढिंढोरा पीटती, प्रेम किए दुखोए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला गाना सुनते हैं। जरा बूझिए आप गीतकार का नाम और स्वर किसकी आवाज में ये गाना है। फिल्म बड़ा आदमी, और कोई नहीं बूझ पाया ये गाना। बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग गाने लिखे लेकिन ये गाना किसी ने नहीं लिखा। जरा सुनिए तो, और जरा संभालिए अपने दिल को और नोट कर लीजिएगा डायरी में ये गाना भी, जो लोग नियमित रूप से नोट करते हैं गाना। संभाल

बड़ा आदमी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था गीतकार का नाम और किसकी आवाज में गाना है। सभी श्रोताओं ने सही बताया, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, लेकिन गीतकार का नाम बहुत सारे लोगों ने गलत बताया, प्रेम धवन की रचना थी ये।

एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि मोहब्बत का फलसफा अजीब है। जब प्रेम अपने रंग में होता है तो साधारण से दिन भी उत्सव लगने लगते हैं। हर आहट में संगीत सुनाई देता है और हर ख्वाब में उम्मीदों के फूल खिल उठते हैं। लेकिन यही मोहब्बत जब अधूरी रह जाती है या बिछड़ने की दास्तान बनती है, तब वही फूल यादों की चुभन और अश्कों की नमी में बदल जाते हैं। मोहब्बत इबादत भी है और इकरार भी है, मुकद्दर के इम्तिहान की तरह कठिन भी। शायद इसीलिए मोहब्बत का फलसफा अजीब होते हुए भी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ये इंसान को जीना, मुस्कुराना, इंतज़ार करना और कभी कभी टूटकर फिर से संभलना भी सिखा देता है और बहुत सहनशीलता भी सिखाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे चाचा जी बाहर गांव सर्विस करते थे, तो उन्होंने एक रेडियो लाया था। वो वापस सर्विस पे जाते थे तो रेडियो पूरे दिन मेरे पास रहता था। तो आज की इबारत बहुत सुंदर लग रही है और मैं वो दिन याद कर रहा हूँ। शुक्रिया इस बात के लिए। अब बहुत सारे श्रोताओं की ओर से इस गाने की फरमाइश आई है, फिल्म ये रात फिर ना आएगी, और जो इबारत है, इबारत में जो शब्द है, फिर मिलोगी कभी इस बात का वादा कर लो, तो इसमें कई शब्द आ जाते हैं। प्यार वाले शब्द भी आते हैं, इकरार वाले भाव भी आते हैं। तो सुनिए ज़रा ये गाना और हमें बताइए कि किस पर फिल्माया गया है ये गीत और गीतकार का नाम। और आपको अपनी मुलाकात याद आती है किसी से तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। यादों के गलियारों में आप टहल रहे हैं इन गानों के माध्यम से, तो अपनी यादें साझा करते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। कभी किसी से आपने ये बात कही थी जो गाने में है? कभी किसी से पूछा फिर कब मिलोगी?

गीतकार एसएच बिहारी, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें फिल्म ये रात फिर ना आएगी। और श्रोताओं की ओर से जानकारी आई है, शर्मिला टैगोर, एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी से मेरी पहली मुलाकात मेरे जीवन का एक यादगार पल है, इस गाने के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बार उन्हें देखकर मन में अपनापन और सम्मान का भाव जागा। उनकी सादगी, मुस्कान और सहज स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो मुलाकात भले ही छोटी थी, लेकिन उसी ने हमारे रिश्ते की खूबसूरती की शुरुआत की। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल पार्क में गर्मी बहुत हो रही है, कभी कभी कोई नहीं आती है। जब चलने का समय होता है तब पूछती हैं, कल आओगी ना, मिलोगी ना। भाई ये तो सहज सा सवाल है और ये इस गाने में ज़रूर है। और हमने पूछा था कि आपने कब किसको कहा था, पूछा था ये सवाल, तो बता सकते हैं आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता की टिप्पणी है कि लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना रिश्ते को पवित्र रखता है। बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यासा कौवा वाली कहानी अपनी पोती को सुना रही थी, जैसे कि मैं हिंदी में सुना रही थी। पूरी कहानी सुनाने के बाद बोलता है, दादी ये प्यासा कौवा नहीं था, ये तो थ्रस्टी क्रो था। तब मैंने उसे बताया कि तुम्हें प्यास लगती है तो बोलते हो ना कि मम्मी मुझे प्यास लगी है, तो हिंदी में प्यासा ही बोलते हैं। क्या बात है भाई। तो ठीक है, अगर वो थ्रस्टी क्रो के नाम से सुनता है तो भी उन्हें सुनाइए, धीरे धीरे वो प्यासा कौवा समझ जाएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि ज़रा संभालिए अदाएं आपकी, ये गाना साल 1961 का है, बड़ा आदमी फिल्म का, बड़ा ही खूबसूरत और सदाबहार रोमांटिक युगल गीत है। इस गाने को सुर कोकिला, लता मंगेशकर और दिग्गज गायक महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज़ से सजाया था। और अभी अभी एक टिप्पणी आई है, लिखा है हमारे श्रोता ने कि अनेकों प्रेरणादायक कहानियाँ बच्चों को बचपन से आज तक धर्म पत्नी सुनाती रहती हैं और साथ में मैं भी सुन लेता हूँ, मैं स्वयं व्यस्तता के कारण सुना नहीं पाता हूँ। चलिए अच्छी बात है, ये सुनते और सुनाते रहिए। अब फिल्म दिल ने पुकारा, बताइए पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना। मुकेश की आवाज़ है, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

और अब हम गाने के साथ थोड़ी सी बेवफाई करके ये गाना पूरा नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि एक गाना जो ज़रूरी है इबारत से जुड़ा हुआ और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, दिल ने पुकारा फिल्म का ये गीत था, उसके बाद छोटी सी मुलाकात ये वाला गाना सुनवाना है, लेकिन कुछ टिप्पणियां भी आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकातें टीस देती हैं, बात अधूरी रह गई, साथ छूट गया। कुछ एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पतिदेव मुझसे भोपाल मिलने आया करते थे, वो बात याद आ गई। एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह से 10:30 बजे तक विविध भारती हम सुनते हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के साथ हमारी दोस्त याद आ गए, दादी और दादा याद आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लाइन में कहानी वाली बात, बहुत मज़ा आया पढ़कर। अब ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: and in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia-Herzegovina in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
3: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक

0: की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमाह 24,00,000 रुपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जाँच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कैनेडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों

0: रोकने जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज नशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

0: संस्कृत भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: तीसरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं मुकेश की आवाज में।

मुकेश की आवाज में ये था तीसरी कसम फिल्म का गाना, रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आइए अब सुने रोशन की बनाई तर्ज पर लता मंगेशकर का गाया गाना, रचना है साहिल लुधियानवी की फिल्म बहू बेगम।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दिल दिया दर्द लिया फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। लिखा था इसे शकील बदायूनी ने, धुन बनाई थी नौशाद ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार।

आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। राजा मेहदी अली खां के बोलते फिल्म थी वो कौन थी। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: दोस्तों, प्रकृति नियमबद्ध है, जैसे सूर्योदय होना, फिर शाम हो जाना, रात को चांद की चांदनी बिखेरना और भोर की पहली किरण के पहले चुपके से ओझल हो जाना। इसी तरह मौसम का भी चक्र है, जैसे गर्मी की तपिश के बाद रिमझिम बरसात, फिर गुलाबी ठंड और बाद में बसंत की बहार। इसी तरह जीवन के भी अपने चक्र हैं। इन्हीं में से बेहद मासूम और खूबसूरत नियम है छुट्टियों के बाद बच्चों का फिर से स्कूल लौटना। अब कई घरों में खेलकूद की जगह धीरे धीरे स्कूल जाने की तैयारियां अपनी जगह बना रही है। तो बस आज अपनी सहेलियों से इन्हीं बातों को, इन्हीं यादों को याद करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। पहली कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, सरिता कुमारी।
0: सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: दीदी, अयोध्या रसूलाबाद।
0: अरे वाह, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से आप बात कर रही हैं। तो बताइए, क्या चल रहा है जीवन में, क्या करती हैं आप?
1: क्या दीदी, बस ये घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। आप बताइए, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी सखियां हैं सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें।
1: इतना आज बहुत खुश हूँ, इतना दिन के बाद कॉल लगा, इतना दिन से तगाई कर रही थी।
0: जी, हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए, आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दीदी, प्रेम रतन धन पायो।
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
1: वही प्रेम रतन धन पायो गाना
0: जी,
1: ही है।
0: जी, तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं। तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: जी मैं चांदनी जी बोल रही हूँ।
0: चांदनी जी
1: छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। हाँ
0: चांदनी जी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात है। चांदनी जी क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं, गृहिणी हैं, क्या करती हैं, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: जी क्या बात है।
1: घर को ही देखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ और सारा दिन रेडियो सुनती हूँ। मेरा रेडियो सुनते सुनते सारा दिन पूरा काम होता है।
0: देखिए रेडियो से जो प्रेम है, विविध भारती से जो प्रेम है, इसी वजह से तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना चांदनी जी? अच्छा मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके कितने हैं?
1: जी मेरे 3 बच्चे हैं मैम।
0: अच्छा
1: तो बेटे हैं मैम, एक लड़की है।
0: अच्छा क्या बात है।
1: जी मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है, तो दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब शॉप पे रहते हैं और एक बैंक में है बेटा।
0: अच्छा तो बड़े बच्चे हैं। तो हम आपको यादों की गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहाँ जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियां होने लगती थी तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियां लेकर आके घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके?
1: बच्चे जब आते थे कॉपी किताब लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे, तो कहते थे मम्मी कवर चढ़ा के दो। हम बहुत उसको इतना तंग करते थे बच्चा, हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम
0: जी,
1: तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे। तो खाकी कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी कवर आते थे ना पहले,
0: जी,
1: खाकी
0: जी,
1: कवर
0: जी,
1: उसको चढ़ाते थे। फिर उसके बाद जो चिट बोलते हैं वो चिट लगाते थे, फिर नाम लिखते थे। उसके बाद फिर वो बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए। वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया, मम्मी हमको भी लगा के दीजिए।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम धन्नो जायसवाल बोल रहे हैं, झांसी से।
0: झांसी से धन्नो जायसवाल। धन्नो जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आपके कितने बच्चे हैं?
1: हमारे 3 बच्चे हैं
0: जी। तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
1: हाँ, बड़े हो गए। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है, और दो लड़कियाँ हैं, वो दिल्ली में हैं, उनकी शादी कर दिया।
0: अच्छा जी, जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना या फिर उनके झगड़े होते थे?
1: हम ही करते थे, मैडम सब हम करते थे।
0: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के उनका पालन पोषण किया है, और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बैठा है दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है, जब किसी से प्यार होता है।
0: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का। चलिए,
1: आप ही बिन
0: जी। तो तुम बिन फिल्म का, आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: आपकी मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी। जी बताइए मधु जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ।
0: जी
1: बताइए।
0: जी हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए क्या करती हैं आप जीवन में?
1: ऐसे तो साधारण गृहिणी हूँ, पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
0: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं वास्तव में तो भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ।
0: जी तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगी अपनी सभी सखियों के लिए?
1: हाँ
0: जी सुनाइए।
1: अपनी रचना सुनाती हूँ।
0: जी।
1: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई, जब से तुमको ना खुदा माना है, खुद से हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, तूफान में ढूंढती नहीं ठिकाना है। ये मेरी दुकान कविता है।
0: बहुत सुंदर कविता। आप कहती है साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: सरस्वती चंद्र का छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
0: जी बेहद सुंदर गीत है। तो विविध भारती की ओर से आपको सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती कैला सुतार बात कर रही हूँ बीड़ जिले से।
0: वैजयंती सुतार, वैजयंती जी कैसा चल रहा है जीवन, क्या चल रहा है इन दिनों में बताइए।
1: अच्छा चल रहा है।
0: क्या करती हैं आप?
1: कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, मैसेज हूँ और इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ टाटी चौक में।
0: जी
1: हाँ, उनकी रसवंती शॉप है, रसवंती
0: जी,
1: गन्ने की रस जूस सेंटर। हाँ
0: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन दिनों तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और
1: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
0: जी बिल्कुल, तो आप अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
1: हाँ, उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीक्राफ्ट होके भी बहुत काम करते हैं, स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
0: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का साधन है ना, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, सभी का एक अपना अपना अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है, मेहनत करते हैं।

0: उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना?
1: बहुत बहुत बहुत हाँ
0: जी। तो घर में आपके बच्चे भी हैं?
1: हाँ, मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, और मिस्टर जो है वो काम भी कर रहे थे यहाँ
0: जी,
1: पे
0: जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे थे तो गर्मी की छुट्टी के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं है ना, तो उन दिनों में बच्चों की कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ करता था आपके घर में?
1: बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल, छुट्टों में भी कैसा करते थे, पढ़ाई में से ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है तो फिर ये बुक लो, बुक लो, पेंसिल लो, कुछ कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल लो, राइटिंग के, ड्राइंग के, इसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू तो फिर कवर लगाने का, मैं बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी करते थे।
0: जी बिल्कुल। और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे करते थे?
1: हाँ, ये शाम भी करते थे ना, उधर की पत्ता इधर इधर का उधर हम उसको
0: खेल बनाते थे। हाँ ये बात तो है। तो देखिए ना, बच्चों के साथ साथ आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना?
1: बहुत बहुत मैम
0: जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। वैजयंती जी, आज बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, उनको पसंद है।
0: अच्छा, तो आपके पति को पसंद है इसलिए आप सुनना चाहती हैं?
1: बहुत पसंद है, यस।
0: तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीया है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है ना?
1: जी बिल्कुल
0: जी। तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी जी मैं बेसिकली गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है।
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है, घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप। और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
1: जी मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है, बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है। वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं, कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए, तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी
0: जी।
1: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
0: जी हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
1: जी जी मैं मंचन भी करती हूँ, मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
1: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
0: जी
1: इसका शीर्षक है आशियाना।
0: आशियाना शीर्षक।
1: जी जी। ए मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कांधे सी मजबूत उसकी छत हो छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो सहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूल्हा, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं सी खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हमसफर एक ऐसा आशियाना बनाना, मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकून दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार अगली कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए आप आपके पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो मैडम
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: साधना गजवे बोल रही हूँ मैडम, मैं नागपुर से।
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में? अभी
1: गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में
0: जी,
1: गाने का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं
0: जी। तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम, किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, और घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की
0: जी। मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम करती हैं?
1: ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर पे बनाते
0: जी। तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती
1: हैं? से घर के जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है बहुत बड़ा है, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं।
0: अच्छा,
1: जॉब वाले तो उन लोग ऑर्डर देते हैं तो उनका बना देती हूँ।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने।
0: तो बहुत अच्छी।

0: बात है, तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेशा, ये गाना सुनना है।
0: बिल्कुल, आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता।
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता, कहाँ से बात कर रही हैं आप डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से।
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: हाँ जी, ये छोटा टाउन है। जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहाँ पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली
0: जी।
1: तो मैं वहीं पे रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा में आपकी स्पेशलाइजेशन है, बताएंगी आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं, कोटपुतली में करती हैं, किस तरह से हैं बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली लोकेट हुई हूँ, तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
0: अच्छा, तो यानी आप अभी यहाँ पे, आपका ट्रांसफर हुआ है किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है?
1: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं,
0: अरे
1: तो
0: वाह,
1: इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई।
0: तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो कैसा लग रहा है अब आप यहाँ पर नए शहर में है? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
1: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
0: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है या आप अभी कर नहीं रही हैं?
1: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन।
0: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए, इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
1: नहीं नहीं मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो पेशेंट को किस तरह से आप, शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
1: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम कर रहे हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना होगा?
0: बिल्कुल।
1: तो इसीलिए जड़ से उपचार करने के लिए हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है धीरे धीरे सवाल से, पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
0: जी, तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
1: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे। वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा। अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, तो बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है।
0: जी बिल्कुल। तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपना काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो चलिए, आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, ये तो बताइए नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता उइके।
0: क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसी हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी।
0: जी सिकंदरा से, तो ये इसके आसपास कौन सा बड़ा शहर है?
1: ये पास में वाराणसी है।
0: अच्छा।
1: और बालाघाट है।
0: जी बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: गृहिणी है।
1: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
0: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
1: हाँ दीदी। हाँ जी।
0: जी तो सुनीता जी, हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा है, पति है, दो बच्चे हैं।
0: जी
1: देवर के एक है, एक मेरा है।
0: हाँ। अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके हैं अब?
1: नहीं नहीं, छोटे दीदी, एक है अभी 9 साल का, अभी मतलब 14 तारीख को हो जाएगा 4 साल का बर्थडे है उनका।
0: जी तो ये भी मुझे बताइए, अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे?
1: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
0: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
1: हाँ दीदी। हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो हाँ उनको भी कभी कभी समय मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम मैं ही कर देती हूँ।
0: जी जी, तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना?
1: हाँ दीदी। हाँ
0: जी,
1: अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दी है, बच्चे अब स्कूल चालू होने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे गर्मी की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी, आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया, आप ये बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुनना था, मेरे घर आई है नन्ही परी।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालगाना का इंदौर से मैडम।
0: जी ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ, गाने के बोले दिल का सुनना सा ताराना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है।
0: जी तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियों, आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों के वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताज़ा की और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबां। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, मुंबई का STD कोड है 022, अंग्रेजी में 02240024662, 022 मुंबई का STD कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02228670288, मुंबई का STD कोड है 022, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज की हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की जुबा हेलो सहेली।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी, और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नज़र उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थीं। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

0: अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि।
1: बहुत जगह है मेरे कमरे में, यही हॉल

हाँ पक्का। अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदल कर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज़ सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नज़र हटाकर मेज पर सजी महिला की फ़ोटो देखने लगी। फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूमकर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे। तुम उसे बता क्यों नहीं देती? क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला। प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती। पर बताना तो पड़ेगा ना? पता नहीं। उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लू। प्रेम, ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है, देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूँगा। तुम जानते हो मेरी हालत। तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूँगा। मुझे डर लगता है प्रेम। क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए। हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ। प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे। अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूँगा। तभी मोबाइल पर नज़र पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नज़र पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती लेकिन अंजलि की सोचकर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू। लव यू टू। प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्मा जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों, दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई। लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली। अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें, मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए, और ये भी कि आज अरविंद क्या पहन कर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ, वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ, बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो। क्या? मैं कर दूँ मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूँगी। अच्छा, बुआ ने ज़्यादा जोर ना देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुँह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी। किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो, अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ, मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध दो बेटा। बुआ, मुझे खुले बाल पसंद हैं। अच्छा बाबा, जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देख कर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी।
उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जवां दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नज़र अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और? अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी। और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना में हिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई। तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया लेकिन अंजलि की नज़र उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो, इतनी तो खूबसूरत हो तुम। वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो, बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे, पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई, लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी। लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूँ कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था, लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी, लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं? कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदाबांदी रुक गई थी, लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी। वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना चाहिए।

अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ ना उसे, ये बता अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक बस। अरे यार तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना इसलिए ऐसा कह रही है, एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहां वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को दो दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ की एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। दो दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है। और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ। परेशान हो क्या? हाँ थोड़ा परेशान हूँ। बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा। नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी। अरे हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई ना कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उसे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थी। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी। लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वहां उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहां तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहां अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

0: रोज मोबाइल किनिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे?
1: मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ।
0: फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया।
1: नहीं आई बस।
0: अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे।
1: क्या?
0: मिलकर बताती हूँ।
1: अरे बताना।
0: नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा।
1: पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे।
0: अंजलि झुंझला उठी। अरविंद के बारे में है।
1: अरविंद?
0: हाँ।
1: क्या हुआ अरविंद को?
0: कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली।
1: अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में?
0: आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ अभी।
1: मैं आऊँ यूनिवर्सिटी?
0: नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था। हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा,
1: तुम मेरा इंतजार मत किया करो।
0: अरे तुम फोन भी? लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता।
1: ये क्या कह रहे हो और क्यों?
0: जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं।
1: क्योंकि यही सच है,
0: अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ नहीं आया कि कैसे दूँ। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज़ तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना? पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है जिसमें लिखा है, मम्मा मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, लेकिन वो इंतज़ार बहुत साल पहले ख़त्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फ़ोन कर ही लोगी, पर वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़ कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतज़ार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज़ हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।
2: तेरी दुनिया से हो के मजबूर चला

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे अरकवान रब्बही की लिखी कहानी अंजलि, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अगले सप्ताह किसी नई कहानी के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।

एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। आइए आज आपको शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें।

अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ थोड़ी देर में आप सुनेंगे गाने नए पुराने।

गीता संदेश प्रस्तुत किया जाएगा शाम 6:20 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे अध्याय 6 के श्लोक 1-3 की व्याख्या। प्रस्तुति है डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा की।

सैनिक भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा जय जवान 7:30 पर। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे गुलदस्ता शाम 7:45 पर।

आपका पसंदीदा कार्यक्रम चांदनी रातें सुनेंगे आप रात्रि 10 बजे। साथियों, ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। एक जरूरी सूचना, राहुल कुमार पुत्र श्री सुभाष चंद्र निवासी गांव बड़ौंदा थाना लाड़वा, इनकी पत्नी सलोनी भमोरिया व लड़की अश्वी, आयु तकरीबन 4 साल है, जो बिना बताए घर गांव बड़ौंदा से 3 जून को कहीं चली गई हैं। सलोनी भमोरिया की उम्र 24 साल है और इनका रंग सांवला है। कद 5 फुट, उन्होंने पैरों में चप्पल पहनी है और पिंक कलर का सूट पहना हुआ था। लड़की अश्वी की उम्र तकरीबन 4 साल बताई जा रही है। जिस किसी को भी इनके बारे में सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस नंबर पर सूचित करें 1744-222-100। फ़ोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लेंगे 0174-222-100। सूचना समाप्त हुई।

एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। 5:05 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम गाने नए पुराने का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म धुरंधर दारिवेंच का ये गीत। अगला गीत हम ले रहे हैं फिल्म टू स्टेट से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। 5:30 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम युवाणी का। आज आप कार्यक्रम युवाणी में सुनेंगे युवा फरमाइश। तो ये सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी।

कार्यक्रम युवानी सुनने वाले हमारे सभी साथियों को नमस्कार। साथियों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे, गर्मी का आनंद ले रहे होंगे और अपने काम को अपने तरीके से दुरुस्त होकर कर रहे होंगे। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, आज आपकी फरमाइश के गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं और कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं आपके इस गीत के साथ। और ये फरमाइश जो आपने भेजी है फिल्म फना से के लिए, इस गीत के लिए आपने भेजी है, तो पहले गीत सुनते हैं फिर आपके नाम पढ़ देते हैं।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म फना का गीत, और इस गीत को सुनने के लिए आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी थी। गंगो जिला सहारनपुर से हैं इलियास मंसूरी, हसन मंसूरी, सुबहान मंसूरी। हरिपुर कैथल से हैं आप जोगीराम, विशन, कांशीराम, रामनिवास, संदीप, सतीश कुमार और समस्त विशन परिवार। जोहारनगर दुर्ग से हैं श्रीमती करुणा, प्रज्ञा, साधना, मीना और श्रेया कांबड़ी। भंडार सिवनी कोंडा गांव छत्तीसगढ़ से सुभाष चक्रधारी, कविता चक्रधारी, मुस्कान, अनुष्का। शालर पहलगांव कश्मीर से हैं पीरजादा मेहरुद्दीन, कैशरदीन और नजमदीन। भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से हैं अशोक श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, प्रमिला और ज्योति। बोरखेड़ा चित्रामल जिला उज्जैन से लिखते हैं विनोद मुनत, नेहा, दीपक, चेतन, दिलीप सिंह, दीक्षा। मॉडल टाउन पानीपत से हैं संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा, आन्या, अनाया, नेहा, सागर, हिमांशु गुगलानी, ईमू, सुधीर। आप सभी ने सुना फिल्म फना का ये गीत। अब ये संदेश।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: साथियों, अगला गीत हम ले रहे हैं आप सभी की फरमाइश पर फिल्म दिल से। सदर बाजार कस्बा नुक्कड़ जिला सहारनपुर से हैं मोहम्मद शाहिद अमीर, बेगम बेबी, गुड्डो, रूबी, अजीम, आयत, फौजिया और नितिन। कस्बा चिलकाना से हैं शोभियान, राजीव, अमित, विजेंद्र। फजिलका पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल, टिवानसी, शालनी, आरबी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन और खेड़ा परिवार। शिरपुर जैन से हैं वाशिम, गिरीश, संगीता, मनीषा, विपिन, अश्विन, श्रद्धा, मीना, रेणुका, मौसमी और जीतू। भंडारी सिवनी कोंडागांव छत्तीसगढ़ से सुभाष चक्रधारी, कविता, मुस्कान, अनुष्का। शालर से हैं पीरजादा मेरुद्दीन, कैशरद्दीन, नमजद्दीन। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी। बिलासपुर गंगोह से तेजपाल सिंह, अनुराधा, शमा, शिवी, मधुबाला, प्रजापति। बठिंडा से हैं डवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और लक्की नारंग। गांव बाता कैथल से चांदी राम चंदेल, गुरमीत कैसल, सोनू, मीन नीनू, कुमार गौरव और नीरज चंदेल। आप सभी की पसंद पर फिल्म दिल से का ये गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: साथियों, अगला गीत हमने लिया है फिल्म परदेश से, और इसे सुनने के लिए आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी है। अपनी गांव धुरा भाटापारा से हैं प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, कुमारी संगीता, नेत्राम, भूपेंद्र साहू। खैर बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल। मुरादाबाद से यूपी से हैं रणवीर सिंह, गीता रानी, पायल, टिल्लू, दीपिका पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, ये सभी हैं अनारकली बाजार जगराव से। मोहन सैनी, कुलदीप, हरदीप, नवीन सैनी, रामनाथ, शाहनवाज आलस आलम, ये हैं बासेवाला जिला यमुनानगर से। कस्बा सिसोली जिला मुजफ्फरनगर से हैं विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी और साहिल जयजान। लोको का कॉलोनी लोहारो से हैं बिलू सिंह टिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र, योगेंद्र और नरेंद्र। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से वीना डिंगरा, कृतिका डिंगरा, महेंद्र, विशु और विजय। ककियोर माजरा से हैं कैथल से रमेश कुमार लोथ, संतोष रानी, अंकुश और अंकिता। मलोट से सतीश मिगलानी, हर्षिता, रमेश्वर, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई, प्रभु लाल बागरी, ये सभी हैं। जिला झालावाड़ा से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, आकाशदीप, अनहद, गुरशब्द, ये सभी हैं गांव कैरो पंजाब से। और दतरंगी छत्तीसगढ़ से हैं भागवत वर्मा। आप सभी की पसंद पर फिल्म परदेश का ये गीत।

0: लत तो लगेगी ही, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
1: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
0: ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार को।
1: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
2: कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म धुरंधर 2 से, जिसे सुनने के लिए आप सभी ने हमें लिखा है। छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, सी एस बेगाना, ये हैं अजीत नगर मलोट पंजाब से। देवेंद्र प्रसाद शिव कॉलोनी रादौर से हैं, नरेश कम्बोज गांव रादौर से, यमुनानगर से, और लक्ष्मीपुर से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज कुमार साहू, त्रिपुति साहू, सरोजनी कुंती साहू, और सदर बाजार कस्बा नुकर जिला सबलपुर से हैं मोहम्मद शाहिद अमीर बेगम, रूबी गुड्डू, अजीम हिना, अमित और सोनू। आप सभी की पसंद पर ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवानी FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Yatra. During the meeting, Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinated efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. The

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूर संचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल सेवा व सुशासन का स्वर्णिम अध्याय रहा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने श्री मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को उपलब्धियों का कार्यकाल बताया। कहा, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास को नई गति मिली। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समाज व राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए सभी से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। और अब खबरें विस्तार से। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक

0: पॉलिसी के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार नियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल सेवा व सुशासन का स्वर्णिम अध्याय रहा है। इन 12 वर्षों में भारत तेजी से बदला है। वे आज पंचकुला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिकॉर्ड समय तक भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया में नई पहचान दिलाई है। गगनयान की ओर बढ़ते कदम, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता, अंतरिक्ष विज्ञान में भी भारत ने ऊंची छलांग लगाई है। पिछले 12 वर्षों में भारत में संभावनाओं के देश से उपलब्धियों के देश तक की ऐतिहासिक यात्रा तय की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में तुष्टिकरण की राजनीति को पीछे छोड़कर संतुष्टिकरण और अंत्योदय के एक नए युग में प्रवेश किया है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से हर योजना को अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के सफल और ईमानदार प्रयास किए गए हैं।
1: 12 वर्ष के कार्यकाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिया है, ये भारत के विकास का राष्ट्रीय दर्शन है। 12 वर्ष आदरणीय मोदी जी ने ज्ञान के उदय की बात कही है। विकसित भारत में हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना होगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 12 वर्षों में जो 4 स्तंभ हैं, इनके ऊपर गति से, मजबूती से काम हुआ है और विकसित भारत का ये मुख्य आधार भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब हम गरीब को मजबूत करेंगे, हम युवा को पैरों पे खड़ा करेंगे, किसान को सशक्त करेंगे और नारी को साथियों उसका सशक्तिकरण करेंगे, तो विकसित भारत ये गति से बनेगा।
0: उन्होंने कहा कि ये सत्ता को विशेष अधिकार का माध्यम नहीं बल्कि सेवा का संकल्प बनाने की यात्रा है। गरीब कल्याण मोदी सरकार की विकास यात्रा का केंद्र बिंदु है। इसीलिए वर्ष 2014 के बाद देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इस अवसर पर 12 वर्ष की उपलब्धियों से जुड़ी एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों का कार्यकाल रहा है। इस दौरान देश का अभूतपूर्व विकास देखने को मिला। आज फरीदाबाद में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि 10 जून को श्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं और मोदी सरकार के 12 वर्ष राष्ट्र निर्माण, पारदर्शिता, जवाबदेही और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आधारित रहे हैं।
2: आदरणीय मोदी जी देश के सबसे लंबे 12 साल
3: तक रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने।
2: 12 साल देश के विकास के साल के रूप में जाने जाते, क्योंकि पहले दिन से ही मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण के मिशन को लेकर काम किया है। इसलिए आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज भारत की GDP 7.7% है, किसी भी दुनिया के देश की ये GDP नहीं है और पिछली तिमाही तो 8.4% की रही है। मतलब हर तरह से, हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, कृषि हो, एजुकेशन हो, कोई भी क्षेत्र हो, स्टार्टअप हो।
0: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश का बुनियादी ढांचा निर्माण बजट वर्ष 2014 के लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 12,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है, जबकि रक्षा बजट भी लगभग 8,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में कमी आई है तथा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास को नई गति मिली है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और रक्षा निर्यात के लगभग 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का भी उल्लेख किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब में समाज कल्याण व अधिकारियों की रक्षा के लिए नीतिगत या व्यक्तिगत रूप से कार्य करने में कोई कोर कसर

0: नहीं छोड़ी जाएगी। वे आज पंजाब के राजपुरा में सैनी समाज कल्याण समिति द्वारा आयोजित सैनी महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने राजपुरा की धरती की वीरों की पावन और ऐतिहासिक धरा बताते हुए कहा कि ये क्षेत्र दोनों राज्यों के भाईचारे का प्रतीक है।
1: इलाका पंजाब ते हरियाणा नु जोड़न वाला ये सिर्फ एक पुल नहीं है, सगो दोहां सूबियां दे ये प्यार सांस ते भाईचारे दा ये प्रतीक है। इस मिट्टी ने मेहनती किसान पैदा करन दा काम कीता है, इस मिट्टी ने बहादुर जवान देन दा काम कीता है। समाज दी सेवा करन लई उम्र लाण वाले सेवक इस भूमि ने दित्ते।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की बागडोर संभाली है, नई नीतियां बनाई और लागू की हैं, जिनसे गरीब व्यक्ति को विकास की धारा में लाने का काम किया है। पंजाब में हरियाणा की तर्ज पर जन कल्याणकारी नीतियां लागू की जाएंगी। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अनेक वादे करके पंजाब के लोगों को झूठ बोलकर बरगलाने का कार्य किया। आज जनता स्वयं को ठगा सा महसूस कर रही है। श्री नायब सिंह सैनी ने समाज एवं राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए सभी से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया और कहा कि इस प्रयास से पंजाब को भी समृद्ध एवं खुशहाल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समाज के हकों की रक्षा के लिए जोरदार पैरवी की जाएगी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी गुरु पर्व पर पाकिस्तान धार्मिक यात्रा के लिए भेजे गए जत्थे के वाघा बॉर्डर से वापस आने के मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा ने यह जानकारी दी। गौरतलब है कि श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी गुरु पर्व पर हरियाणा से एक जत्था पाकिस्तान में धार्मिक यात्रा के लिए 9 जून को कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी से भेजा गया था, परंतु किसी कारण से 10 जून को इस जत्थे को वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करने दिया गया। डाक विभाग द्वारा अम्बाला मंडल के किसी भी गांव या वार्ड की मांग पर आधार अपडेट के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक विजय कुमार ने आज अम्बाला में ये घोषणा की।
2: अपने डाकघरों में हमने आधार के लिए, नामांकन के लिए, आधार अपडेशन के लिए, आधार में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए, आधार में फोन नंबर अपडेट के लिए अलग अलग जगह पे काउंटर लगाए हैं। किसी गांव में या किसी वार्ड में अगर 50 या 50 से ज्यादा लोग आधार के लिए तैयार हैं या फिर वो आधार का अपडेशन करवाना चाहते हैं तो उनके सरपंच या कोई जनप्रतिनिधि हमसे संपर्क कर सकता है, तो उसको हम उनके एरिया में भी ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
3: एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 हो चुके हैं। समय है गीता संदेश का। आज आप सुनेंगे अध्याय 6 के श्लोक 1-3 की व्याख्या। व्याख्या कर रहे हैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा।
4: श्रोताओं नमस्कार। गीता संदेश कार्यक्रम में आज से हम श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के श्लोकों की व्याख्या आरंभ कर रहे हैं। आइए पहले श्लोक से आरंभ करते हैं। 6 अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ कर्म के फल का त्याग करते हुए केवल करने योग्य यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्मों का शास्त्रीय विधि से अनुष्ठान करता है, वह सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी व क्रियाओं को त्यागने वाला योगी नहीं है। सन्यासी का धर्म है एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, अर्थात वह ज्ञान यज्ञ का ही अनुसरण करे, अन्य यज्ञादि कर्मों का त्याग करें। इसलिए सन्यासी अग्नि का स्पर्श नहीं करता, लेकिन केवल अग्नि का त्याग संन्यास नहीं है, अपितु कर्तव्य कार्यों को अवश्य ही करना, वह त्याज्यों को अवश्य ही त्यागना, वह कर्मफल को त्यागना ही सन्यासी व योगी कहलाता है। कर्तव्य कर्मों में स्नान, संध्या, लोक मर्यादा, भजन, पूजन आदि को नहीं त्यागना चाहिए, अपितु उन्हें तो अवश्य ही करना चाहिए। षष्ठाध्याय का यह श्लोक संपूर्ण षष्ठाध्याय का प्रमुख श्लोक है। यों तो श्रीमद् भगवद गीता जी के किसी भी अध्याय का कोई भी श्लोक अपने आप में संपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, जीवन परिवर्तन का सामर्थ्य व सार है। किसी भी अध्याय का प्रथम श्लोक उस अध्याय के वर्ण विषय व सिद्धांत का संकेत करता है। यहाँ षष्ठाध्याय का यह प्रथम श्लोक अनाश्रितः कर्मफलम से आरंभ होता है। इन्हीं दो शब्दों में ही सिद्धांत स्थापित कर दिया गया है कि कर्मफल की आशा नहीं करनी चाहिए, कर्मफल का त्याग करना चाहिए। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म में है, उसके फल में नहीं है। इसीलिए कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते हुए कर्मफल का त्याग कैसे संभव है? मनुष्य तो फल व प्रयोजन को मस्तिष्क में रखकर ही कर्म करता है, फिर उसका त्याग कैसे संभव है? इसका त्याग संभव है आत्मसंशय से, आत्मसंयम से। अतः इस षष्ठाध्याय का नाम है आत्मसंयम योगाध्याय। आत्मसंयम ध्यान से संभव है, इसीलिए भाष्यकारों ने इस अध्याय का नाम ध्यान योग भी रखा है। यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव, नह संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इस श्लोक में पूर्व अर्थात प्रथम श्लोक के भावों को पुष्ट किया गया है। हे अर्जुन, जिसे संन्यास कहा है उसे तुम योग ही जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता है। संकल्पों का त्याग ही योग है, क्योंकि संकल्प के पृष्ठभाग में विकल्प भी है, और संकल्प विकल्प ही कर्मों के बंधन में बांधते हैं। संकल्प विकल्प मन का स्वभाव है, और मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो हो। पहले कर्मफल का त्याग, पुनः संकल्पों का त्याग, दोनों ही योगी बनाते हैं। योगी होना ही, योगी बनाना ही गीता का उद्देश्य है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, तस्माद् योगी भवार्जुन। योग युक्त जीवन ही दुखों का विनाश करता है। योगो भवति दुःखः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त स्वप्नावबोध दुखों के नाश के लिए होते हैं। आज के चकाचौंध व कुत्सित संस्कृति की चपेट वाले युग में हर कोई भ्रमित, संतप्त, कर्तव्य अकर्तव्य व अर्जुन की तरह मोह व विषाद की अवस्था में दिखाई दे रहा है। इंटरनेट के दुष्प्रभाव ने आग में घी डालने का काम किया है। विशेषतः युवा व विद्यार्थी जीवन में इसके दुष्प्रभाव छुपे नहीं है। ऐसी स्थिति में श्री गीता जी का यह योगमय जीवन का उपदेश सन्मार्ग पर लाकर जीवन को आनंदमय बना सकता है। युवाओं को निज जीवन में, दैनिक कार्यों में, गतिविधियों में योग युक्त कर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त शयन, युक्त जागरण, युक्त स्वप्नावबोध, शास्त्रानुसार सूर्योदय से पूर्व जागरण योग युक्त जागरण है। सूर्योदय के बाद जगना भारतीय संस्कृति नहीं है। इसी तरह रात्रि में उचित प्रहर में शयन, आयुर्वेद के नियमों व सूत्रों के अनुसार भोजन ग्रहण, मूत्र पुरीष आदि का यथावश्यक त्याग आदि जीवन को योग युक्त बनाते हैं। अतः छात्र जीवन से ही इन सिद्धांतों के प्रति पालन हेतु कटिबद्ध होना चाहिए। आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। हे अर्जुन, जो आरुरुक्षु अर्थात योगारूढ़ होना चाहता है, उसके लिए निष्काम कर्म ही उत्तम साधन है। व योगारूढ़ हो जाने पर सभी संकल्पों का त्याग ही सम अर्थात शांति व कल्याण का हेतु है। सभी को कामनाओं का त्याग करते हुए निष्काम कर्म करने से योग का मार्ग उपलब्ध होता है। कामनाओं का त्याग किस प्रकार संभव है? कामनाओं का त्याग सिद्धि व असिद्धि में, लाभ व हानि में, जय व पराजय में, समत्व एक रूप के अभ्यास से संभव है। अभ्यास से ही निष्काम कर्मयोग की सिद्धि संभव है। निष्काम कर्म सिद्ध होने पर सभी संकल्पों का त्याग ही कल्याण का हेतु है। जीवन को संकल्प रहित करने की अनेक विधियां, मार्ग व उपाय है। कामनाओं का त्याग शास्त्रीय सिद्धांतों व गुरु वचनों का चिंतन, मनन व निधिध्यासन से एक समय जीवात्मा निस्संकल्प हो जाता है। इसलिए इस श्लोक में आरुरुक्षु के लिए मुनि विशेषण का प्रयोग किया गया है, अर्थात सतत मनन से निस्संकल्पता की सिद्धि होती है। इस प्रकार निस्संकल्प अर्थात संकल्पों के त्याग का यही सर्वोत्तम उपाय है कि शास्त्र विहित बातों का, शास्त्र विहित सिद्धांतों का, गुरु के द्वारा उपदिष्ट वचनों का सतत श्रवण, मनन व निधिध्यासन किया जाए, तभी निस्संकल्प स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। निस्संकल्पता की अवस्था में ही योगी अपनी परम अवस्था को प्राप्त होता है। श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आपने श्री गीता जी के 6 अध्याय के श्लोक 1-3 तक की व्याख्या सुनी।
3: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश। आज आपने सुना अध्याय 6 के श्लोक 1-3 की व्याख्या, और व्याख्या कर रहे थे डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा। FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं।

एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अन्नदाता।

कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे फलदार वृक्षों में सूत्रकृमि रोग पहचान और उनकी रोकथाम के उपाय पर, और साथ ही भाइयों चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत मिर्च की बिजाई में सावधानियों पर, और प्राकृतिक खेती में जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती शुरू करने में सावधानियों पर। इसके अलावा भैया करवाओगे मनोरंजन और जो दूसरे समसायिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। तो शुरुआत करें भाइयों चर्चा से फलदार वृक्षों में सूत्रकृमि रोग पहचान और रोकथाम के उपाय पर। किसान भाइयों, अपना जो हरियाणा प्रदेश है इसकी जलवायु कई तरह के जो फलदार पौधे हैं उन खातर बढ़िया मानी गई।

0: और ख़ास तौर पर अपना जो किन्नू है, माल्टा है, बेर है, अमरूद है, अंगूर है, इस तरह की जो बागवानी है अपने प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय भी है। साथ ही जो नींबू वर्गीय फल हैं उनमें विटामिन सी के जो है ये बड़े अच्छे स्रोत माने गए हैं और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य खातर भी ये बहुत बढ़िया माने गए हैं। जो नींबू वर्गीय फल हैं और ख़ासतौर पर जिसमें अंगूर है उसमें सूत्रकृमि रोग फैलन तक कई बार जो हमारे बागवानी कर रहे हैं किसान भाई उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ जाए है। तो अगर हमने समय पर इन रोगों की पहचान हो जाए और सही समय पर किसान भाई जो हैं इनकी रोकथाम कर लें तो हमारे किसान भाई जो है खूब लाभ कमा सके हैं। तो जो नींबू वर्गीय फल हैं उनमें मुख्य जो सूत्रकृमि है एक तो है, उनकी हम बात करें तो उसमें एक तो सबसे पहली बात है भाई वो रोग के लक्षण कि जो हमारे नींबू वर्गीय हम फल ले रहे हैं उनमें कौन कौन से लक्षण हमने देखने मिले हैं बीमारी के। तो जो नींबू वर्गीय फल है उसमें नींबू जाति का सूत्रकृमि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा हुआ है और रोग के लक्षण में भाइयों पौधे के पत्ते और जो टहनी है वो ऊपर तक सूखनी शुरू हो जाए और ये जो सूखापन है ऊपर तक नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए और कमज़ोर जो फल हैं वो छोटे फलों का जो उस पर लगना है उन फलों के समय तक पहले ही गिरना ये आम लक्षण है। साथ ही साथ भाइयों अगर जड़ के आकार की बात करें तो जड़ जो है उसकी आकृति विकृत हो जाए यानी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए और मिट्टी के जो कण हैं उनके साथ अच्छी तरह से जो है जड़ वो चिपकनी शुरू हो जाए। साथ ही जो जड़ है उसमें मटमैले रंग का हो जाना ये उसका मुख्य लक्षण है और ज़्यादा प्रकोप होने से जड़ों की जो खाल है वह उतर जाए और काले मटमैले जो है धब्बे इसमें दिखाई देने शुरू हो जाए। तो बात करें इसकी रोकथाम की तो किसान भाई जो है अगर उन्हें ये लक्षण दिखें तो फूल आने से पहला कार्बोफ्यूरान जिसने हम फ्यूरान 3G के नाम से भी जाना है उसके दाने हमने 13 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर तय पौधे के तने के आसपास 9 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यानी कि मोटी मोटी बात करें तो भाइयों 117 ग्राम हमने लगभग जो है कार्बोफ्यूरान एक पौधे के हिसाब से अच्छी तरह से मिलाकर और बाद में इसमें हमने खूब पानी दे देना है। दूसरा भाइयों अगर फूल आने से पहला अगर हम नीम की जो खड़ी है 1 किलोग्राम लेकर एक पौधे के हिसाब से और साथ में कार्बोफ्यूरान इसके दाने हम 7 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर तय पौधे के तने के आसपास के 9 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मिलाना अच्छी तरह से यानी कि लगभग 63 ग्राम हमने प्रति पौधा के हिसाब से मिलाना है और फिर बाद में भाइयों पर्याप्त मात्रा में इसमें दे दें पानी। तो इस तरह हम इसकी सूत्रकृमि की रोकथाम कर सकें। साथ ही बात करें भाइयों अंगूर के सूत्रकृमि या जो जड़ गांठ सूत्रकृमि है जिन हम रूट नोट भी कहते हैं तो इस रोग के लक्षण भाइयों की अंगूर की जो बेल है उसमें फुटाव कम हो जाएगा साथ ही जो टहनी और पत्ते हैं वो छोटे रह जाएंगे और पत्ते जल्दी पीले पड़कर गिरने शुरू हो जाएंगे। साथ ही भाइयों इसमें जड़ में जो है गांठ मरनी शुरू हो जाएगी और खाद पानी सोखने वाली जो पत्ती हैं उनमें जड़ों की संख्या कम दिखने लग जाएगी और प्रकोप अगर ज़्यादा हो जाए बीमारी का तो जड़ जो है वो गलनी शुरू हो जाए। इसकी रोकथाम खातर किसान भाई जो है फुटाव तक एक हफ्ते पहला जो है कार्बोफ्यूरान के दाने जो हैं वो 13 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर तय बेल के जो तने हैं उसके आसपास 9 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यानी कि लगभग 117 ग्राम हमने एक बेल के हिसाब से अच्छी तरह से मिलाना है और बाद में भाइयों खूब इसमें पानी दे देना है। साथ ही अंगूर की बेल के बीच के जो क्षेत्र हैं उसमें लहसुन की फसल उगा लें और साथ में लहसुन की फसल लगाने के साथ साथ कार्बोफ्यूरान के दाने जो हमने 7 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर तय बेल के तने के आसपास 9 वर्ग क्षेत्र में जो है लगभग 63 ग्राम हमने इसमें कार्बोफ्यूरान लेना है उसने अच्छी तरह से मिलाकर उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी देता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो जो फलदार हमारे वृक्ष हैं उनमें हम सूत्रकृमि जो रोग है उसकी रोकथाम कर पाएंगे और जो हमारे किसान भाई बागवानी कर रहे हैं उन बागों के जो फलों के बाग लगा रखे हैं खासतौर पर जो खट्टे फल हैं तो उसमें वो लाभ ले पाओगे। तो ये तो करीब भाई चर्चा फलदार वृक्षों में सूत्रकृमि रोग की पहचान और उसकी रोकथाम पे।
1: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। SIDS और जलवायु परिवर्तन, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। छोटे द्वीप वाले विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पैदा हुई एक्स्ट्रा गर्मी का 90% हिस्सा महासागरों में सोख लिया है। इस गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। जिन द्वीप देशों में ज्यादा लोग रहते हैं और जो कम विकसित हैं, वे सबसे बड़े खतरे में हैं। उनकी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम सीधा प्रभावित हो रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ने और तेज ट्रॉपिकल तूफानों से तटीय इलाकों में लहरों का तूफान, तटीय कटाव, खरे पानी का घुसना, फसल खराब होना और पानी की कमी हो जाती है। कुछ द्वीप तो निर्जन भी हो सकते हैं। यह एक दिलचस्प तथ्य है। किरीबा, मालदीव्स और वानुआतू जैसे एशिया पैसिफिक के द्वीप देश दुनिया के सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में गिने जाते हैं।
2: लत तो लगेगी ही, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
3: ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा,
2: ऐसा देश है मेरा। हर दूसरी और चौथी शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार को।
3: ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा।
0: और किसान भाइयों, अपनी जो खेती बाड़ी है वो तो सारी मौसम पे निर्भर करे है, और मौसम की जानकारी दे रहे हैं भाई मनजीत।
4: साथियों, आज का मौसम है अधिकतम तापमान 32°C और न्यूनतम तापमान 26°C बताया गया, और कल का संभावित तापमान है 34°C अधिकतम है और 25°C न्यूनतम है। तो जानकारी के लिए धन्यवाद विनोद कुमार जी।
0: मंजीत भाई, ये तो रही मौसम की बात, और कल के जो कृषि कार्यक्रम है, यानी कि कल है दिन शनिवार और शनिवार नाम लेकर कार्यक्रम किसानवाणी, तो किसानवाणी कार्यक्रम में कल चर्चा करेंगे खेत बचाओ अभियान पर, और साथ ही आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे किसानों के लिए ट्रैक्टर का महत्व, और जानकारी देंगे भाइयों गर्मियों में मुर्गी घरों का प्रबंधन और अन्य देखभाल पर। और इब करवाऊं भैया का मनोरंजन, सुने एक लोकगीत।
5: केसरिया रंग में रंग दे।

ये तो सुना भाइयों ने लोक रागणी, और गायक कलाकार थे रामफल शर्मा और साथी। और भाइयों ये करें चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत मिर्च की बिजाई में सावधानी पे। किसान भाइयों, मिर्च जो है एक मसालेदार फल है, और किसी भी व्यंजन में जो भी हम व्यंजन बनाए हैं उसमें मिर्च का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। यानी कि कह लें कि हर सब्जी का जो स्वाद हो मिर्च से बना है, और मिर्च का भाइयों में इस्तेमाल सब्जियों में, मसाले में, सॉस में, अचार में, कई तरह की जो है खाने पीने की चीज़ें हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसकी उस जो उत्पत्ति है भाइयों वो मेक्सिको तो हुई, और इसका उपयोग भाइयों दुनिया भर में भोजन की जो तैयारी है या दवाई के जो मुख्य घटक हैं उसके रूप में भी करा जा हुआ है। और पूरे विश्व स्तर पर जो नए आंकड़े आए हैं उसके अनुसार भारत जो है वो मिर्च उत्पादन में दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है। इसके बाद चीन, पेरू, स्पेन और मेक्सिको का नंबर आ हुआ है। और अपने देश में भी भाइयों जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार और यूपी और राजस्थान, ये जिले जो हैं इनमें मुख्य रूप से जो है तिखे पनवाड़ी और तिखे रंगाड़ी जो है मिर्च उगाई जावे है। और कुछ बड़े आकार की जो मिर्च है उनको जो है बेल मिर्च भी कहा जावे है। इनका उपयोग भाई सब्जी के रूप में भी करा जावे है। तो जो मिर्च है इसकी जलवायु, इसका त्रिकोण सी जरूरी है, और मिर्च की खातर जो सबसे बढ़िया जलवायु वो है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जिसमें कह ले भाई गर्म, नम और शुष्क मौसम जो है वो बढ़िया माना जा हुआ है। और इसकी बढ़ोतरी खातर भाइयों जो इसके जो बढ़ोतरी के चरण हैं उसके दौरान अगर गर्म और नमी वाला मौसम रहा तो बहुत बढ़िया माना जा हुआ है, और जो शुष्क मौसम है उसमें फल की जो पकड़ने की जो गति है वो बहुत बढ़िया रहा है। मिर्च खातर या जो मिर्च की बढ़ोतरी है उस खातर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान सब तो बढ़िया है, लेकिन अगर तापमान भाइयों 40

डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो फल की बढ़ोतरी पर इसका बुरा असर पड़ना शुरू हो जाए। साथ ही साथ भाइयों, भारी बारिश की स्थिति में भी पौधा जो है वो सड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि जो मिर्च का पौधा है वो ज़्यादा पानी सहन नहीं कर सकता। हालांकि जो फलने की जो अवधि है इसके दौरान भाइयों, कम नमी की स्थिति में जो है जो कली है वो ठीक तरह विकसित नहीं हो पाती, यानी कि इसमें हल्की नमी बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भाइयों, फूल और फल अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी गिरने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और औसत तापमान की अगर हम बात करें तो मिर्च की फसल खातर जो औसत बढ़िया तापमान है वो 18 से 40 डिग्री सेल्सियस और जो औसत बारिश है वो 600 से 1500 मिलीमीटर इस खातर बढ़िया मानी गई है। साथ ही बात करें भाइयों, मिर्च की खेती के लिए मिट्टी की किस तरह की हो, तो मिट्टी कई प्रकार की है। हालांकि जो मिर्च की हम खेती ले हुए हैं तो किसी भी प्रकार की मिट्टी, चाहे वो रेतीली हो, भारी मिट्टी हो, उसमें भी हम इसने उगा सकते हैं। और एक अच्छी तरह से सूखी हुई उचित नमी धारण करने वाली जो मिट्टी है वो इसके लिए सबसे बढ़िया मानी गई है। और हल्की माटी भाइयों, भारी माटी की तुलना में ज़्यादा गुणवत्ता वाले फलों को उत्पादन भी देव है। और मिर्च की फसल खातर भाइयों, जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6 से 7 तक अगर हो तो जो मिर्च की फसल उस खातर सबसे बढ़िया माना गया है। और मिर्च की खेती भाइयों खरीफ और रबी दोनों फसलों के रूप में हम ले सके हैं। इसके अलावा जो अन्य समय है उस पर भी हम मिर्च की फसल ले सके हैं। और खरीफ की फसल खातर भाइयों, बुआई के जो महीने सबसे बढ़िया है वो मई ते जून का समय है, और रबी फसल खातर भाइयों सितंबर ते अक्टूबर का समय। लेकिन अगर किसान भाई जो है अगर गर्मी की फसल के रूप में लगा रहे हैं तो जनवरी फरवरी का महीना भी किसान भाई चुन सके हैं। इसके अलावा मिर्च की खेती खातर पानी की बात करें तो मिर्च भाइयों इसी फसल है जो बहुत ज़्यादा पानी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारी बारिश और जो ठहराव हो जाए पानी का खेत में तो उसमें पौधे की जो जड़ है वो सड़नी शुरू हो जाए। और सिंचित फसल के मामले में भाइयों, जब जरूरत हो खेत में तभी पानी देवाएं। खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा है कि खेत में हमने नमी बढ़ाकर रखनी है जो कि 25% से ज़्यादा रहे। बार बार पानी देने तक जो है फूलों की जो छटाई और जो उसकी जो वनस्पतिक जो विकास है उसमें तेजी आओगी। और सिंचाई खातर भाइयों, पानी की मात्रा, सिंचाई की जो संख्या है वो उस जगह की जलवायु और उसकी परिस्थिति और उसकी जो मिट्टी की प्रकार है उस पर भी निर्भर कर है। यदि पत्तियां जो है दिन के समय में गिरना शुरू हो जाए तो ये पानी की आवश्यकता का संकेत है कि भी खेत में पानी देने की जरूरत है हमने। इसी तरह भाइयों, अगर फूल कमजोर लग गए या उनमें शक्ति ना दिखाई दे हुए बिल्कुल मुरझा से गए हैं तो फल में सिंचाई जो हमारी फसल है उसमें हमने सिंचाई की जरूरत है। और एक बार मिट्टी की जो नमी है वो 25% तक कम हो जाए तो भी सिंचाई जरूर करें। बात करें भाइयों मिर्च की उन्नत किस्म की, तो जो उन्नत किस्म है वो है CH1। इसमें भाइयों पौधे मध्यम आकार के हल्के हरे रंग के फलों हैं जो पकने पर गहरे लाल रंग के हो जाए हैं। और फल जो है ज़्यादा तीखे और आकर्षक हों हैं। फल सड़ने और गीला सहन करने के लिए जो है प्रतिरोधी है। साथ ही यह लाल मिर्च की जो किसान भाई हैं लगभग 96 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से इसकी उपज ले सके हैं। दूसरी किस्म भाइयों इसकी CH3। और जो CH1 तो यह ज़्यादा इसकी फल की लंबाई है और यह लाल मिर्च की 105 क्विंटल प्रति एकड़ की हिसाब से हमने औसत उपज देता है। इसके अलावा भाइयों CH27, इसके पौधे लंबे हो हैं और लंबे समय तक यह फल दे सके है। और इसके जो फल हैं वो लगभग 6.7 सेंटीमीटर लंबे और पतले चमड़ियाले हल्के गहरे रंग के हों जब यह कच्ची हो है, और जब यह पक जाए तो लाल गहरे रंग के हो जाए। और यह जो है लीफ कर्ल वायरस, फ्रूट रोट और फ्रूट नोट नेमाटोड और माइट जैसे जो रस चूसने वाले कीट हैं उनके प्रति प्रतिरोधी है। और लाल पके हुए फल की औसत उपज हमारे किसान भाई जो है 96 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। इसके अलावा भाइयों पूसा ज्वाला, ये जो किस्म है इसके पौधे बोने जंगली हल्के हरे गहरे रंग के हों और फल भाइयों 9 से 10 सेंटीमीटर लंबे हों हैं, साथ ही ज़्यादा तीखे और थ्रिप्स और माइट के प्रति ये काफ़ी सहनशील किस्म है। और किसान भाई जो है 34 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से हरी मिर्च और 7 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से सूखी जो मिर्च है औसत के रूप में ले सके हैं। इसके अलावा भाइयों पूसा सदाबहार, पौधे इसमें सीधे बारहमासी और 60 से 80 सेंटीमीटर लंबे हो जाए हैं। फल जो है

इसमें गुच्छे के रूप में और पके फल जो है वो गहरे लाल, अधिक तीखे, और साथ ही साथ जो किसान भाई हैं लगभग 38 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से हरी और 8 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से सूखी इसकी औसत उपज ले सके हैं। इसके अलावा भाइयों एक किस्म और है, हिसार शक्ति या जल्दी उपज देने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता है, और क्लस्टर में फल यानी कि जो गुच्छे हैं उसमें फल देव है, यानी कि 5 से 6 फल एक गुच्छे में है, और फल की लंबाई भाइयों 7 से 8 सेंटीमीटर, और किसान भाई जो है इसकी औसत उपज ले सके हैं 50 से 55 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से। बात करें भाइयों खेत की तैयारी की, तो मिर्च की खेती खातर जो जमीन है वो 2-3 बार अच्छी तरह उसमें जुताई कर लें और बढ़िया जो है टिल्ट में ले आवें, जो भी बजरी पत्थर है मिट्टी में मौजूद है वो नसब न हटा लें, और जब भाइयों बीज सीधे मिट्टी में बोया जा रहा है तो इसने जो है अंतिम जुताई चक्कर के साथ जरूर करें। हालांकि जुताई के समय जो है मिट्टी की अच्छी तरह से जो है उसने समतल कर लें, एक बराबर कर लें, और पौधे जो ताकि जो पौधे हैं उनको प्रभावित होने वाले जो रोग हैं उन से बचाया जा सके। साथ ही भाइयों बात करें बीज की मात्रा की, तो 1 हेक्टर के लिए लगभग जो है 1.5 से 2 किलोग्राम बीज इसमें पर्याप्त रहेगा। साथ ही भाइयों आमतौर पर जो मिर्च का प्रत्यारोपण इसलिए कराया जावे है क्योंकि बेहतर परिणाम अगर हमने लेने हैं तो ऐसा हमने करना पड़ेगा, और विशेष देखभाल तभी करी जा सके है जब पौधे 4 से 6 हफ्ते पुराने हो जाए और रोपाई जो है वो हाथ करी जावे और 4 से 5 पत्ती जब इसमें विकसित हो जाए, और आमतौर पर भाइयों रोपाई जो है शाम के समय करें, और खासकर जो अपना हरियाणा प्रदेश है तो इसमें बुआई भाइयों नवंबर के तीसरे हफ्ते तक करी जा सके है और मध्यम फरवरी में भी इसकी रोपाई ली जा सके है। इसके अलावा भाइयों बात करें खाद और उर्वरक की, तो मिर्च की जो फसल है उसमें उर्वरक का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही करें, क्योंकि सामान्यतः जो है 1 हेक्टर क्षेत्रफल में 25 से 30 टन गोबर की बढ़िया सड़ी हुई खाद और या फिर भाइयों 5 से 6 टन जो है वर्मी कंपोस्ट खेत की तैयारी के समय उसमें मिलावें, और नाइट्रोजन भाइयों 120 से 150 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम, और पोटाश की मात्रा हमने 80 किलोग्राम जो है एक एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। ये तो भाइयों ली जानकारी नई फसल नई उमंग के तहत मिर्च की बिजाई में सावधानी पर, और इब करें भाइयों चर्चा प्राकृतिक खेती में, प्राकृतिक खेती शुरू करने में सावधानी पर। किसान भाइयों हमने अपने खेत बचाने हैं और उस खातर हमने जो है रासायनिक खेती तक प्राकृतिक खेती की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारी माटी जो है उसकी भौतिक दशा, उसकी रासायनिक दशा, उसमें कार्बनिक जो तत्व है उसकी मात्रा सब कम होता जाने लग रहा है, साथ ही साथ जो हमारे पानी का चोहा है वो भी नीचे जाने लग रहा है, और जो जमीन के अंदर जो पानी है वो भी दूषित होने लग रहा है, साथ ही हमारी हवा भी दूषित होने लग रही है जब हम ये जहरीले कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं और जो रासायनिक उर्वरक हम खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने प्राकृतिक खेती की तरफ जाना पड़ेगा, इनकी प्रकृति तक जुड़ना पड़ेगा। ऐसे में भाइयों जो छोटे किसान भाई हैं अपनी खेती पर जो पूरी तरह से निर्भर हैं, तो एकदम तो पूरी तरह कुदरती खेती नहीं अपना सकते और अपनी रोजी रोटी का जो खतरा वो मोल में नहीं ले सकते, इसलिए भाई उस कोशिश करें कि जो हम थोड़ी सी जगह में पहला प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें, क्योंकि शुरू में 2-3 साल तक तो जो पैदावार है वो घटेगी शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे जो है पैदावार बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसलिए हम अपनी ज़मीन के उतने हिस्से में यानी कि आधा एकड़ ले लो या अपनी ज़मीन के हिसाब से 1 एकड़ या 2 एकड़ तक इसकी शुरुआत कर सके हैं, जितने कि थोड़े समय में आमदनी के जो घटन का खतरा है वो हम सहन कर सकें, और अपने खेत में भाइयों इतने हिस्से में पूरी तरह से रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि केवल यूरिया इत्यादि का प्रयोग बंद ना करें, वो भी हमने कम तो करना है लेकिन धीरे धीरे उसमें हम कम करेंगे, और इसके साथ साथ भाइयों प्राकृतिक खेती के जो दूसरे सारे उपाय हैं उस पर भी हम जरूर गौर रखें, ध्यान रखें। इसके साथ साथ भाइयों बाकी खेत में भी इन सारे उपायों में से जितने भी अपनाए जा सकें उन हम अपनावें, धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ अपने खेत ने लेकर जावें। और कई लोग तो भाइयों यह बात सोचते हैं कि शुरुआत में ही नहीं जो है हम एकदम तक कीटनाशक बंद कर देंगे, परंतु जो हमारा जो पड़ोसी है वो कीटनाशक का प्रयोग करने लग रहे हैं तो हमारे खेत में भी जो है कीटों का प्रकोप बढ़ेगा,
ये डर जो है लगभग हर किसान भाई के मन में रहा है कि मैंने तो प्राकृतिक खेती शुरू कर दी और मैं जो है कीटनाशक का प्रयोग नहीं कर रहा, और हमारा पड़ोसी है वो कीटनाशक का प्रयोग कर रहा है, तो उसके खेत के सारे कीट मेरे खेत में आ जाएंगे। तो इस चीज़ का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से हम कीटनाशक तैयार कर रहे हैं वो कीटनाशक भी उतने प्रभावी हैं जितने कि रासायनिक कीटनाशक प्रभावी हैं। इसलिए भाइयों, खेत के जिस हिस्से में प्राकृतिक खेती अपनाई जा रही है उस हिस्से में मित्र कीट बढ़ाए जावें, और जो दूसरी और मिट्टी और जो पौधे हैं उनकी बढ़वार बढ़ावें, तो प्राकृतिक तरीके से उगाए जाने वाली जो भी फसल हैं उन पर कीटों का हमला कम तक कम होगा। यानी कि किसान भाई जो अपने मित्र कीट हैं उनकी संख्या बढ़ावें, तो जो मित्र कीट हैं वो अपने आप हमारी फसल की बढ़ोतरी करने में मदद करेंगे। इसलिए भाइयों, इस डर तय कि पड़ोसी के खेत में कीटों का हमला होगा उसकी शुरुआत करने तय ना डरें। साथ ही साथ अच्छा यह रहेगा कि जमीन के एक हिस्से पर चाहे वो एक कनाल हो या पूरी तरह तय जो हमारी जितनी भी हम जमीन ले रहे हैं उसमें रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग एकदम बंद कर दें, और बिल्कुल उस हिस्से में प्राकृतिक खेती करें, यानी कि जीवामृत का प्रयोग करें, बीज उपचार करें, कई फसल इकट्ठी बोएं, पेड़ इत्यादि जो है ज़्यादा ज़्यादा लगाएं, ताकि जो है उस मिट्टी में जो रसायन है उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। 2-3 साल लगेंगे और उसके बाद जो है उस खेत में भी हमने बढ़िया उपज मिलनी शुरू हो जाएगी। और अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी जो थाली तक जो जहर पहुंच रहा है, जो हमारे खाने में जहर आने लग रहा है, वो जहर भी धीरे धीरे कम होगा, हमारी मिट्टी में भी जो जहर है वो कम होगा, और जो धरती माता हमारी बांझ होने लग रही है वो बांझ होती मिट्टी भी दोबारा जो है उपजाऊ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो भाइयों ली जानकारी प्राकृतिक खेती में, प्राकृतिक खेती की को शुरू करने में सावधानी पर। और मौसम में भाइयों लगातार बदलाव आने लग रहा है, कभी मौसम में लू चल रही है तो कभी एकदम से जो है बूंदाबांदी आने लग रही है। तो ऐसे में भाइयों हमने अपने स्वास्थ्य का खास तौर पर ध्यान रखना है कि जब गर्मी ज़्यादा है तो ऐसे मौसम में हमें जो है तरल पेय पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, वो किसी भी रूप में उसके लस्सी है, नारियल पानी है, या पीने का आम पानी है, वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। और साथ ही अपने जो पशुधन है उसका भी हमने ख्याल रखना है कि अपने पशुओं को भी दिन में 3-4 बार हम ताज़ा पानी जरूर दिखावें, और जो बेसहारा पशु हैं, जो आवारा पशु हैं, गली में कुत्ते हैं, या जो हमारे जो पक्षी हैं उन खातर भी दाना पानी जरूर रखें, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं है, तो हमने उनका भी ख्याल रखना, उनका भी हमने ध्यान रखना है। इसी के साथ भाइयों आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक, और अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम अन्नदाता 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब होगा भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम संसार।

कार्यक्रम ग्राम संसार सुनिए सारे बाण भैया ने एक बार फिर विनोद भाई की राम राम। भाइयों आज ग्राम संसार कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बाल श्रम निषेध दिवस पर और साथ ही करवाऊंगे भैया का मनोरंजन और कार्यक्रम की शुरुआत ही भाइयों करें एक लोकगीत है।

रामचंद्र संस्था भजनी और शिव का भजन कर पार्वती फलक शिव देख नाथ तेरी सेवा भजन मैं फोन खड़ी आ रही जी सुनो

क्या कहना, वो नाथ शिव मुझे कहो, घर की नारी और पिया कहो, तो मैं संग चलूं और जन्म जन्म की रहूं मैं दासी, मेरी एक सुनो रे शंकर भोले। बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम

इतना शब्द सुना लहरी ने तो, इतना शब्द सुना लहरी ने तो कहन लगे अंतरयामी रे तू तो बड़ी री दीवानी, पार्वती रे तू तो बड़ी री हठीली, पार्वती मेरे आगे राखी और पीछे खाक, कोई राज नहीं दरबार नहीं कोई राजा का लड़का मैं भी नहीं, कोई हाट नहीं बाजार नहीं साहूकार का लड़का मैं भी नहीं, तू जैसी सुमहल रहने को चाहिए री सहज पिलंग, सोने को चाहिए री मस्तक पे बिंदिया मंगेगी और गुजराती, दामन मंगेगी और फूटे की भी अंगिया मंगेगी और कहां से लाए, शंकर जोगी ही आरी हेरी गवर जा, पार्वती ही और बम बम बम या गड़े बम बम।

फिर कंवर जा रे कहन लगी मेरी एक सुनो शंकर बोले रे तेरे शिव के कहने ना मंगू रे तेरे अरे हंसले ना मंगू रे बूटे की बियंगिया ना मंगू रे मेरी एक सुनो शंकर बोले रे तेरी हरी हरी कुटिया कर दूंगी सांपों के महार बनाऊंगी रे मेरी एक सुनो शंकर बोले बम बम बम बम बम या कर बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम ब

दिल फेरे बैठे नाथ हो बैठे नाथ शिव असी बरस की बन बैठे और कहन लगे अंतरयामी हरि हरी कवर जा पार्वती मेरी गई जवानी आया बुढ़ा पर क्यों जोगी के काज पड़ी और डगमग डगमग नाहड़ करे री मेरी भड़क भड़क भड़के नाड़ी और टूटर टूटर मेरे दांत करे री और फकर फकर मेरी जीप करे री और जर बलर मेरा पेट करे री मेरा गोटे से गुड्डा लगता और बम बम पमिया कड़े बम बम बम बम पमिया कड़े बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम

कबर जा कहने लगी जब, फिर कबर जा रे कहने लगी जब, उत्तर देने लगी कोहरा, मैं तो जान गई र पहचान गई, क्षण में गोरा क्षण में काला, क्षण में गोरा रे क्षण में काला, क्षण में

तीरथ तो राजा की लड़की शक्ति हरी हेरी गवर जा पार्वती रथ तो राजा की लड़की शक्ति कोई अच्छा कुंवर राजन का ढूंढ ले रही जहाँ पे तेरी गुजर कटेरी तू तो महलों में बैठी राज करेरी तू तो बंगलों में बैठी हुकम करेरी तेरी बांधी भी लौंडी भी चहल करेरी और राजा भी पर जा भी अब है मान किसी और पवन ब्याही जावेगी और

शंकर बोले है और कह तो तू शंकर मुझे अपना हलेर नहीं समझ ले। तू लहरी मैं देख सरासर जल जाऊंगी खुशी भसम हो जा तेरी रे तेरा तीन लोक में पता ना चले। ओ शंकर बोले

0: ये तो सुना भाइयों ने, लोकगीत और फिल्म थी जर जोरू और जमीन।
1: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और गरीबी, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन सबको प्रभावित करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब लोगों को होता है। गरीबी की वजह से लोग जलवायु के असर से बचने या उभरने में कम सक्षम होते हैं, खासकर महिलाएं और

0: सुनो, गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और भाइयों, एक करा चर्चा बाल श्रम निषेध दिवस पर। भाइयों, बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 22 जून में पूरी दुनिया में मनाया जावे है। और इस दिन में जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है वो है कि जो बाल श्रम है उसके खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ाना और बाल अधिकारों की रक्षा करना और बच्चों को शोषण से बचाने और उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और सुरक्षित बचपन उनको प्रदान करना है। और इस महत्वपूर्ण दिन पर जो अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2002 में करी गई थी और इसका उद्देश्य था कि बाल श्रम को समाप्त करने के लिए मजबूत नीतियों का बनाना और साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो और सामाजिक सुरक्षा और वयस्कों के लिए अच्छे रोजगार के अवसर प्रदान करना। साथ ही साथ भाइयों, अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाओ है। इसके अलावा बाल श्रम निषेध और अधिनियम के तहत बच्चों को रोजगार के लिए उनके लिए सख्त नियम बनाने के भी इसमें निर्देश है। और इस साल का जो विषय है बाल श्रम दिवस में वो है बाल श्रम के खिलाफ लाल कार्ड, यानी कि बच्चों के लिए उचित अवसर और वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। और मराकेश में आयोजित बाल श्रम अनुमोलन पर जो छठे वैश्विक सम्मेलन में कार्रवाई में जो है तेजी लाने और जो प्रतिबद्धता है उसको ठोस परिणामों में बदलने के लिए तत्काल उसकी जरूरत की पुष्टि भी करी गई है। साथ ही भाइयों, बाल श्रम के विरुद्ध कार्रवाई के लिए मराकेश वैश्विक ढांचा, जिसमें बाल श्रम से निपटने के लिए एक ठोस रोडमैप और संकेतक प्रदान करना है, जिसमें मूल कारणों को संबोधित करने खातर प्रत्येक बच्चे के अधिकारों की रक्षा करने वाली जो एकीकृत प्रतिक्रियाएं हैं उसमें शामिल करी गई हैं। साथ ही भाइयों, बाल श्रम को लाल कार्ड, यानी कि बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम के नारे के तहत 2026 विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस का अभियान बाल श्रम को रोकने और बच्चों को उसके बेहतर, उनको इस बाल श्रम से बाहर निकालना और नीतियों पर मजबूती से काम करने का आह्वान भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, उनका सामाजिक उनको सुरक्षा देना और वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम और पर्याप्त आजीविका, मजबूत कानून और प्रवर्तन, साथ ही बेहतर डाटा और निगरानी प्रणाली और कृषि और आपूर्ति श्रृंखलाओं में जिम्मेदार कार्रवाई पर इसमें जोर दिया गया है। और इस कार्रवाई के तहत जो तत्काल है उसमें आवश्यकता है कि प्रगति के बावजूद भी हम देखना करें कि विश्व में लगभग 14 करोड़ बच्चे आज भी बाल श्रम में लगे हुए हैं, जिनमें तो लगभग 54 करोड़ बच्चे जो है वो खतरनाक कामों में लगे हुए हैं। बाल श्रम विरोधी इस विश्व दिवस पर बाल श्रम के खिलाफ जो है वो लाल कार्ड जरूर उठावें, एकजुट हो जाएं और आवाज़ उठावें और कार्रवाई करें, ताकि जो मराकेश की जो प्रतिबद्धताओं को दुनिया भर के बच्चों, परिवारों और उनके जो समुदाय हैं उन तक हम ये बात पहुंचा सकें। और अगर आंकड़ों की बात करें तो भाइयों, कृषि क्षेत्र में बाल श्रम का सबसे बड़ा एक क्षेत्र बना हुआ है, जो कि लगभग सभी मामलों का 61% है, यानी कि दुनिया में लगभग जितने भी बच्चे बाल श्रम में शामिल हैं उसमें से 61% जो है वो कृषि के क्षेत्र में है। इसके बाद 27% सेवाओं में, जिस तरह घरेलू काम है और बाज़ारों में सामान बेचना है, और उद्योग धंधों में लगभग 13% है, जिनमें खनन है और विनिर्माण कार्य शामिल है। तो हमने आह्वान करना है कि जो हम बच्चे हैं इनको बाल श्रम से बाहर निकालना है

और इनके लिए हमने अच्छी बुनियादी शिक्षा की पहल भी करनी है। तो ये तो भाइयों करी चर्चा बाल श्रम निषेध दिवस पे। और इन भाइयों जानकारी लेवे गर्मी तो राहत दिलावे ठंडे शीतल पदार्थ, क्योंकि भाइयों गर्मी के मौसम में ना तो कुछ खाने का मन करता सिवाय ठंडी और ठंडी चीज़ खाने के। और गर्मी के मौसम में खासतौर पर देखा जावे चक्कर आना, दस्त लगना, शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और साथ ही तेज़ धूप की किरणों तक जो है त्वचा का झुलस जाना, ये बड़ी आम दिक्कत है जो हम गर्मी के मौसम में महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे मौसम में जो है हमने कुछ आम उपाय अपनाने हैं जिससे हम गर्मी तक बच सकें। खासतौर पर जो बच्चे हैं वो थोड़े से कोमल हो हैं तो उनका भी हमने खास तौर पर ध्यान रखना है। और गर्मी में भाइयों सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम तरल पदार्थों का जितना ज़्यादा उसका वो सेवन करें। पानी और फलों का जूस हमारे शरीर खातर जो है वो पानी और नमक की मात्रा संतुलित बनाकर रखा है। साथ ही भाइयों ताज़ी दही की बनी लस्सी है, नारियल पानी है, ये भी बहुत बढ़िया है। इसके अलावा अगर जूसी फल जिस तरह तरबूज हो गया, अनानास है, संतरा है, ये सब खूब खावें। और इससे भाइयों खाने से एक तो हमारी प्यास भी शांत हो जाएगी और साथ ही साथ भाइयों गर्मी की जो तपन है उससे भी हमने राहत मिलेगी। साथ ही जो कच्चा आम है वो भी हमने ठंडक देव है तो कच्चे आम का पन्ना बना कर भी जो है लिया जा सके है, जिससे कि शरीर में जो है जो हमारे आवश्यक पोषक तत्व हैं वो भी पूरे रहेंगे और ठंडक भी हमने मिलेगी। इसके अलावा पुदीना जो है वो गर्मी के मौसम में बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि पुदीना हमने ठंडक पहुँचा है तो इसकी चटनी हमेशा बना कर रखें। और पुदीना शरबत जो है वो सस्ता और गुणकारी भी है। और ये जो कब्ज की समस्या है उसने भी ठीक कर है, साथ ही साथ जो है दिमाग ने भी ताकत देव है। तो इसमें बढ़ाने खातर भाइयों पुदीने के पत्ते लगभग 100 ग्राम ले लें और लगभग 300 मिलीलीटर जो है वो हमने लेना है पानी। साथ ही भाइयों उसमें चीनी 1 किलोग्राम हमने लेनी है और जो सिट्रिक एसिड है वो लेना 3 ग्राम। और हरा जो पुदीना है उसने इसमें कूट के पुतिया ने जैसे धोकर और वो इसमें मिला लें। तो चीनी, पानी और जो सिट्रिक एसिड है इन आपस में मिला लें और 2-3 उबाल इसमें अच्छी तरह से दे लें। और हर उबाल के बाद भाइयों गैस ने धीमी कर लें और ऊपर तय जो है इसने ठंडा करके फिर जो है हम इसने इस्तेमाल कर सके हैं पुदीने का जूस बनाने में। इसके अलावा जलजीरे का जो चटपटा स्वाद है वो भी बहुत पसंद आ है तो हम घर बैठे बैठे जो है जलजीरा भी बना सके हैं। और जलजीरा के साथ साथ प्याज जो है वो भी गर्मी के मौसम में अगर हम सलाद के रूप में ले तो वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो प्याज है वो ठंडक का एहसास देव है। और ख़ास तौर पर दोपहर को अगर सलाद के रूप में प्याज लिया जावे तो जो कच्चा प्याज है वो लू तो बचाव है, इसमें खास जो है एक तत्व है जो लू तो हमारा बचाव करे है। और अगर हम प्याज और कच्चे आम की चटनी बना कर खावें तो ये भी हमारे जो है दिन का एक बढ़िया हिस्सा बन सका है, जो हमने सीधा जो सन स्ट्रोक है उससे बचाव है। इसमें थोड़ा सा गुड़, काला नमक, भुना हुआ जीरा और साथ में लाल मिर्च जो है इसमें मिला सके हैं स्वाद के अनुसार, तो एक बढ़िया जो है हमारा एक जो है चटनी तैयार हो जाएगी इसमें। साथ ही भाइयों जो चाय है, कॉफ़ी है, इनकी मात्रा कम कर दें और ना लें तो ज़्यादा बढ़िया है। और कोशिश करें कि भाइयों जो दोपहर का समय है जब दिन में लू चले हैं तो उसमें घर तक बाहर ना निकलें अगर ज़रूरत ना हो। और जब भी घर तक बाहर निकलें तो कोई सर पर जो है कपड़ा वगैरह ढक कर रखें ताकि सर पर जो है सीधी धूप ना लगे। और इसके अलावा भाइयों कोशिश करें जब भी घर तक बाहर निकलें तो पानी पी कर निकलें या बोतल जो है साथ में लेकर निकलें पानी की, क्योंकि पानी का शरीर में पर्याप्त मात्रा में रहना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पर ध्यान रखें कि जब भी हम कोई भी चीज़ खाने लग रहे हैं तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहे और ठोस मात्रा जो है वो कम से कम रखें। इसके अलावा गर्मी के मौसम में हमें ध्यान रखना है कि जो हम व्यायाम कर रहे हैं, शारीरिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो हमने थोड़ी सी कम कर देनी है और प्राणायाम या योग की तरफ हमने ज़्यादा जाना है जिसमें शरीर का तापमान तेज़ी से ना बढ़े। तो इस तरह अगर हम छोटे छोटे उपाय अपनाओगे तो हम गर्मी के मौसम में जो है अपना बचाव कर सकेंगे। और ख़ासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं और घर में जो बुजुर्ग हैं उनका भी हमने ख़ासतौर पर इस गर्मी के मौसम में ध्यान रखना है। तो भाइयों ये तुली जानकारी गर्मी से बचाव पर। और इब करवाऊँ भाइयों का मनोरंजन, सुने एक लोकगीत।

ये तो सुना भाइयों ने फिल्मी लोकगीत, और फिल्म थी पीहर सासरा। और इसी के साथ भाइयों आज के ग्राम संसार कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। 7:30 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम जय जवान का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जय जवान।

तूफानों से लड़ता, तूफानों से लड़ता जो डटकर खड़ा, हर कदम पर दिखाए वो हौसला बड़ा। सीमा की रक्षा में जीवन अर्पण करे, माँ भारती की लाज सदा वो धरे। तेरी वर्दी का रंग हमें गर्व सिखाए, तेरा जख्म तेरा बलिदान कहलाए। धरती से अंबर, पर्वत से सागर तक, तेरी गूंज सुनाई दे हर दिशा के पथ तक। तूफानों से लड़ता जो डट कर खड़ा, हर कदम पर दिखाए वो हौसला बड़ा।

0: Sura soy.
1: लत तो लगेगी ही, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
2: ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा,
1: ऐसा देश है मेरा। हर दूसरे और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा, हर दूसरे और चौथे शनिवार को।
2: ऐसा

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। ठीक 7:45 हुए हैं और ये समय है गैर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गुलदस्ता का। तो ये सुनते हैं इस कार्यक्रम में आज बेगम अख्तर की गाई हुई कुछ गज़लें।

0: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता में बेगम अख्तर की गाई हुई कुछ गजलें। FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

0: कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि साथियों आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं किसी एक विषय पर फिल्मी नगमे, और हमारा आज का क्या विषय रहेगा आप इस गीत को सुनें और समझें।
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

जी, आज हम बात कर रहे हैं पंछियों के बारे में, पक्षियों के बारे में, जो हर जगह पाए जाते हैं, हर देश में, हर कौम में, हर शहर में, हर गांव में इनका बसेरा है। विश्व भर में अगर देखा जाए तो पक्षी लगभग 11,000 इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। वैज्ञानिक रूप से 23 से 40 वर्गों में इन्हें बांटा गया है। जल पक्षी, शिकारी पक्षी, गाने वाले पक्षी और उड़ने में असमर्थ रहने वाले पक्षी, जमीन पर रहने वाले पक्षी, कई तरह के ये पक्षी हैं। बत्तख, हंस, राजहंस, ये सभी तैरने में माहिर होते हैं और अक्सर इन्हें हम झीलों में, तालाबों में, समुद्र के किनारे देख सकते हैं। पेंगुइन, जो उड़ने में असमर्थ है लेकिन पानी के भीतर बेहतरीन तरीके से तैरने वाले पक्षी हैं। चील और बाज और उल्लू, इन सभी को तो हम जानते ही हैं कि किस तरह से अपनी पैनी दृष्टि से ये शिकार को ढूंढ लेते हैं। कुछ पक्षी गाने वाले भी हैं, कोयल है,

अगर हम बात करें कबूतरों की तो कबूतर दुनिया के सबसे आम पक्षियों में से एक हैं। इन्हें हम पार्कों में, शहरों में, गांव में, यहाँ तक कि इमारतों की छतों पर भी देख सकते हैं। ये पक्षी बड़े बुद्धिमान होते हैं और अपनी बेहतरीन उड़ान क्षमता और दिशा ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। पुराने समय में ही इस संदेशवाहक के रूप में काम करने से लेकर आज मनुष्यों के बीच एक शांतिपूर्वक रहने तक कबूतरों का एक लंबा रोचक इतिहास रहा है। मूल रूप से ये चट्टानी पहाड़ियों और तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। कबूतर मनुष्य की तुलना में अधिक रंग देख सकते हैं और यहाँ तक कि पैरा बैंगनी प्रकाश का भी ये पता लगा सकते हैं। ये अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया की लगभग हर जगह पाए जाते हैं। गर्म और मध्यम जलवायु इन्हें पसंद आती है। अक्सर इन्हें खेतों में, पुलों पर, मंदिर, रेलवे स्टेशन आदि पुरानी इमारतों की छतों, किनारों और छिपे हुए कोनों में ये अक्सर घोंसले बनाते हैं और वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी ये घर लौट आते हैं।

सड़कों और स्थलों को आसानी से याद रख लेते हैं, पहचान लेते हैं। बताया जाता है कि इनकी जो गति है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही उड़ सकते हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी ये घर लौट आते हैं। विश्व युद्धों में संदेश पहुंचाने के लिए अक्सर कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ कबूतरों ने 1000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तक संदेश पहुंचाए हैं। जब इन्हें शीशा दिखाया जाता है तो ये खुद को पहचान लेते हैं। कई मामलों में तो कबूतर जीवन भर के लिए एक ही साथी के साथ रहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके अपने घर का रास्ता खोज सकते हैं। कबूतर बुद्धिमान, अनुकूल जगह पर रहना और मिलनसार पक्षी हैं जो मनुष्यों के करीब रहते हैं। उनकी प्रबल घर वापसी की प्रवृत्ति, तेज उड़ान और शांतिपूर्ण व्यवहार उन्हें अन्य पक्षियों से अलग करता है। प्राचीन काल में संदेशवाहक से लेकर आम शहरी निवासी बनने तक कबूतर अपनी अद्भुत क्षमताओं से हमें आश्चर्यचकित करते हैं। कबूतरों की विशेषताएं, आवास, आहार, जीवन चक्र, रोचक तथ्यों के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हम एक साथ कर ही नहीं पाते।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला लायर वर्ड संसार के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। ये पक्षी नकल करने में बड़ा ही कुशल है। दूसरे पक्षियों के गाने, यहाँ तक कि कुत्तों के भौंकने और कारों के हॉर्न की आवाज़ भी बड़ी आसानी से उनकी नकल कर लेता है। हमारे यहाँ तो जो तोते हैं वो प्राय हरे रंग के ही होते हैं, जिनमें प्रबत्ता सबसे बड़ा होता है। जब इन्हें सिखाया जाता है तो ये भी मनुष्य की बोली को बड़ी खूबसूरती से नकल कर लेते हैं। तोते वैसे तो शाकाहारी पक्षी हैं, लेकिन इनको बड़े फल और बीज आदि काटने के लिए शिकारी चिड़ियों जैसे मजबूत और टेढ़ी चोंच मिली हुई है। इनके सहारे ये ककड़ी से कड़ी लकड़ी को भी आनंद फानंद में काट डालते हैं। इनको पालने के लिए यदि लोहे के मजबूत पिंजरे इस्तेमाल में ना लाए जाएं, तो ये बांस के पिंजरे को काटकर फौरन उसमें से उड़ जाएं। तोते के बाद मैना का नाम आता है, जो बहुत ही मीठी बोली बोलती है। काले रंग की पहाड़ी चिड़िया, जिसके कान के पास पीले रंग की कुछ थोड़ी सी खाल बड़ी रहती है। इसको पढ़ाना तोते की तरह आसान नहीं होता और इसको पालने में भी अधिक मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो ये बेचारी मर जाती हैं। मैना के अलावा भवई हैं, धेंगल है, श्यामा को भी मीठी बोली बोलने के लिए पाला जाता है और इनको भी मैना की तरह बोलना सिखा दिया जाता है। मीठी बोली बोले वाले और भी कई पक्षी हैं जिन्हें अक्सर हम सुनते हैं।

अब हम बात करेंगे अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में। पक्षियों का राजा होने के कारण ही प्रकृति ने इसके सिर पर ताज जैसी कलगी लगाई है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। हमारा पड़ोसी देश म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी मोर ही है। मोर पक्षी मादा मोरनी की तुलना में अधिक सुंदर, रंगीन और उज्जवल होता है। नर मोर के आकर्षित करने वाले बड़े बड़े पंख होते हैं, मोरनी में ये नहीं होते। विश्व में पाए जाने वाली मोर की प्रजातियों में सबसे खूबसूरत मोर भारत में ही पाए जाते हैं। कहा जाता है कि मोर का वजन 5 से 7 किलोग्राम तक का हो सकता है। मोर प्राचीन काल से ही शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक माना गया है और प्राचीन काल से ही मोर पंख को मुकुट और सिंहासनों पर लगाया जाता रहा है। मोर भगवान शिव के पुत्र कार्तिक जी का वाहन भी है। इसकी उम्र लगभग 20 वर्ष मानी गई है। सुहानी हुई आज मेरी भोर जब मेरी अंगना आया मोर। सुहानी हुई आज मेरी भोर जब मेरी अंगना आया मोर। मन हर्षित पुलकित हो नाचे मानो खुशियों का नहीं ठोर। पेड़ पौधे सब खिल उठे आमों पे आए बो।

सुंदरता इसकी देख मन ना भरे, फिर देखूं इसकी ओर। कोमल सुंदर सतरंगी पंख इसके, देखो जरा लगाकर गौर।

पक्षी पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि उनका जीवन विविध प्राकृतिक प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है। वे कई तरीकों से पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। पक्षी जल और धरा दोनों को हानिकारक कीटों से बचाते हैं और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। आइए हम भी इन पक्षियों का ख्याल करें, इनके लिए दाना और पानी अपनी छत पर लगा कर रखें ताकि ये भी अपना पेट भर सकें।

0: अब आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, FM बैंड 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार। इन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
3: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
2: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
4: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
5: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार केरल माहे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जम्मू कश्मीर तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइट्स गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू फर्दर विमेन लेड डेवलपमेंट अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स। Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons US Charge d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over US strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinative efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on 3rd of July and conclude on the 28th of August.
2: Union Home Minister emphasized to further strengthen the security framework with extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. Mr. Shah added that the senior officers of CAPF and the Jammu and Kashmir Police will continuously monitor arrangements at campsites throughout the pilgrimage route. He also emphasized for ensuring adequate arrangements for all essential services including pilgrim registration, accommodation, healthcare facilities and disaster management. With Dipendra Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
6: Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata on the occasion of 12 years of the NDA government at the centre. Mr. Adhikari said people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. He said that by giving fair price, West Bengal government is taking the lands from common people and handing it over to the BCF. The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
7: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
6: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke Vikas Ke Jan Kalyan Ke. Today we focus on the measures taken by the government towards positioning India as a global leader through its foreign policy. A report.
8: Over the last 12 years, India emerged as a formidable global leader driven by bold initiatives that fuse ambition with action. Prime Minister Narendra Modi's leadership has anchored these efforts in responsibility and inclusivity, ensuring India's voice resonates across global platforms. India strengthened its old relationship while making new friends, infusing fresh energy into India's foreign policy while keeping the principle of India first supreme. Humanitarian assistance and disaster relief operations are a vital part of India's global engagement. Cyclone Dithwa made landfall on the eastern coast of Sri Lanka in November 2025, leaving hundreds dead, thousands displaced, and critical infrastructure damaged. Standing in solidarity with the people of Sri Lanka, India launched Operation Sagar Bandhu to provide immediate humanitarian assistance and disaster relief to Sri Lanka. The effort brought together the Indian Navy, Air Force, Army, and Disaster Response Team in a coordinated rescue and relief operation. India provided comprehensive support to Sri Lanka, including immediate relief supplies, medical aid, search and rescue assistance, and restoration of damaged infrastructure. Thanking the Indian government, Sri Lanka's Deputy Minister for Ports and Civil Aviation, Janith Ruwan Kodithuwakku, stated that India had shown immense warmth and solidarity toward the people of Sri Lanka.
9: We are very thankful to India because since the day this Dithwa happened, opened their warm heart to us and we really appreciate their help. We are very good friend of India and we would like to extend our thanks to Indian government and the Indian people on behalf of Sri Lankan government and the Sri Lankan people.
8: The major highlight of India's foreign policy came during the COVID-19 crisis. India launched the Vaccine Maitri initiative as a testament to its human-centered diplomacy. Since January 2021, India has supplied over 30.12 crore vaccine doses to 99 countries and two UN bodies. This included 1.51 crore doses gifted to over 50 nations and 5.2 crore doses through COVAX mechanism. Talking to Akashwani News, Dr. Jyotishko Biswas, a physiotherapist and yoga teacher based in Bangladesh, said that the rapid dispatch of the vaccines from India was a profound gesture of goodwill.
10: India जो किया हमारे लिए वैक्सीन
11: एट दैट टाइम इंडिया मेड अ फास्ट रिस्पांस एंड सेंड द वैक्सीन टू अस आई आल्सो टुक दैट वैक्सीन इट वाज वेरी गुड फॉर अस आवर रिलेटिव्स एंड ऑल द कंट्रीमैन इट वाज अ वेरी नाइस गिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड सो फॉर दिस वी आर वेरी ग्रेटफुल बेस्ट विशेस टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड द पीपल मेनी मेनी थैंक्स टू इंडिया
10: इंडिया गवर्नमेंट एंड पीपल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
8: इन द लास्ट 12 इयर्स इंडिया हैज स्टेप्ड अप एज अ ग्लोबल लीडर थ्रू इंपैक्टफुल इनिशिएटिव लाइक वैक्सीन मैत्री एंड ऑपरेशन सागर बंधु दैट ब्लेंड विजन विद एग्जीक्यूशन इट्स कमिटमेंट टू ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रीजनल पार्टनरशिप इज एंकर्ड इन द सिविलाइजेशन एथोस ऑफ वसुदेव कुटुंबकम अमन यादव आकाशवाणी न्यूज दिल्ली
6: Union Minister for Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat has said that the Modi government is committed to the conservation and restoration of India's cultural heritage. In an exclusive interview with Akashvani News, he said, under the mission to bring back stolen or smuggled antiquities from abroad, 670 sculptures and artifacts have been brought back so far. Mr. Shekhawat expressed confidence that this number will cross 1,000 by the end of this year.
12: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको ज्ञान भारतम मिशन
13: अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दिस इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन मिशन मोड अंडर द नेम ज्ञान भारतम मिशन वी आर डिजिटाइजिंग आवर मैन्युस्क्रिप्ट्स इन दिस विजन डिजिटाइजेशन डज नॉट मेयरली मीन क्रिएटिंग अ डिजिटल कॉपी और स्टोरिंग अ डिजिटल वर्जन ऑफ दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स रादर द ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग देम इनटू अ कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट
12: को आसानी से ट्रांसलिटरेट किया जा सके
6: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. External Affairs Ministry today summoned Chargé d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of 3 Indian lives. Our correspondent has the details.
14: The U.S. envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal and deadly force against civilian shipping. The ministry said such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The U.S. Chargé d'Affaires was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operate in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. Suparna Saikya, Akashvani News, Delhi.
6: As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France on Sunday, the spotlight is on India's remarkable startup journey over the past 12 years. From around 350 recognized startups in 2014, India has emerged as the world's third largest startup ecosystem with over 2,55,000 DPIIT recognized startups and 131 unicorns. A report.
15: Several reforms brought by the government over the last 12 years, from the launch of Startup India, establishment of Atal Incubation Centres, the Fund of Funds and simplified compliance norms, have transformed India's entrepreneurial landscape beyond recognition. The ecosystem today spans deep technology, space, defence, agri-tech, health tech and clean energy. Among those that will be spotlighted at the summit is Medev Plus, a medtech startup that has developed a comprehensive, portable eye screening device now being adopted across India, Europe and USA. Built mostly on government support without any venture capital funding. Talking exclusively to Akashvani News, co-founder Ravi Kiran spoke about how the government platform gave their innovation the visibility.
16: When we started, the early stage startups were given a high priority and the government was focusing more on early stage startups and the government is learning very quickly. Modi ji has started putting a lot of efforts towards not just the early stage startups but also the mid stage.
15: It may be noted that India-France Year of Innovation, of which this summit is the centerpiece, seeks to deepen collaboration between the two nations in emerging technologies, startups and scientific research. This is Shailesh Menon, Akashvani News, Nice, France.
6: A Seoul court has sentenced former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison today after finding him guilty of ordering drone incursions into North Korea to escalate tensions and justify his December 2024 martial law declaration. The Seoul Central District Court convicted the jailed former president on charges of benefiting the enemy and abuse of power. Former Defense Minister Kim Yong-un also received a 30-year sentence for his role in the operation. On to sports. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Shen Suyu in a one-sided quarter-final clash today. Sindhu will next face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final match. Yamaguchi defeated India's Tanvi Sharma in the quarter-final clash today. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin tonight with hosts England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston, Birmingham. The match is scheduled to begin at 11 p.m. Indian Standard Time. Indian women's team will start their campaign against arch rivals Pakistan on Sunday. In FIFA World Cup 2026, co-hosts Canada will be up against Bosnia and Herzegovina in a Group B clash at Toronto Stadium tonight. The match will start at 12:30 a.m. Indian Standard Time. The encounter marks the first ever World Cup meeting between the two nations. Benchmark domestic equity indices ended today's trading session with strong gains of around 2%, driven by hopes of de-escalation

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है प्यार का मौसम, शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन हैं।

ग्यावास थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था प्यार का मौसम। आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में गुलशन बावरा की रचना, स्वर लता मंगेशकर का है और ये फिल्म है हाथ की सफाई।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था हाथ की सफाई। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म आंधी में, गीत गुलजार साहब का और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार हैं गुजरे जमाने के जानी मानी ऐसी अदाकारा जो हैं बला की खूबसूरत, जिनके चेहरे पर है नूर।

0: अभिनेत्री श्यामा लाहौर में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थी। उनके माता पिता ने उनका नाम खुर्शीद अख्तर रखा था। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम श्यामा पड़ा।
1: एक दिन मैं गई प्रकाश पिक्चर
0: जी,
1: प्रकाश पिक्चर वालों ने मुझे बुलाया और उसमें कहा नई माँ एक पिक्चर थी, उसमें रोल था छोटी लड़की का
0: जी।
1: तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर। तो कह लगे खुर्शीद तो गाने वाली है, और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद जूनियर, और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई
0: जी।
1: तो मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं। मैंने कहा जैसे आप कहें। तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया।
0: अच्छा, उस समय
1: और मुझे वो नाम इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि श्यामा कौन है
0: जी। बिल्कुल।

9 साल की नन्ही खुर्शीद ने पहली बार फिल्म जीनत की कव्वाली में बतौर सिंगर काम किया। उन दिनों नूरजहां की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और खुर्शीद अख्तर यानी श्यामा अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई दादर के स्टूडियो में शूटिंग देखने। तभी उस फिल्म के निर्देशक और नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुम में से कोई लड़की इस फिल्म में काम करोगी। इस पर श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूंगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्मी पर्दे की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन श्यामा के जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा।

गाने में सिचुएशन ये है कि कार में गुरुदत्त और श्यामा हैं और रूठे हुए गुरुदत्त को श्यामा मना रहे हैं। उन्होंने आंखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आंखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का नाम आता है।

श्यामा को बचपन से ही एक्टिंग और डांस से बेहद प्यार रहा है। स्कूल के दिनों में लंच टाइम में वे डेस्क पर खड़ी होकर डांस किया करती थीं। बाद में उन्होंने नृत्य और गायन की बाकायदा तालीम ली। घर में फुर्सत के लम्हों में डांस की प्रैक्टिस किया करती थीं। अब सुनिए फिल्म शारदा का ये गीत।

0: श्यामा को फिल्म शारदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म देखने की बड़ी शौकीन रही हैं श्यामा। खास बात यह है कि करीब करीब हर फिल्मों से जुड़ी उनकी याद आज भी ताजा है।
1: जब मैं साइड हीरोइन बनी
2: जी,
1: तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, उसका नाम था तराना
2: जी,
1: जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को अब
2: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निम्मी जी।
0: उस दौर के जाने माने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेल्यूलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। फली मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में फली मिस्त्री से उनका विवाह हो गया।

सन 1979 में श्यामा अकेलेपन से घिर गईं और उनके पति फली मिस्त्री उन्हें इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी, वे कदम दर कदम आगे बढ़ती गईं फिल्म संसार में। अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी पांचवें दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सशक्त अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और श्यामा उन दिनों खूब व्यस्त रही फिल्म संसार में।

अरविंद शर्मा ने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, लीड रोल भी किए, चरित्र अभिनेत्री के किरदार को भी बड़ी कुशलता से निभाया और कई फिल्मों में खलनायिका के रोल को भी पर्दे पर उन्होंने साकार किया। बहरहाल सुनिए बरसात की रात फिल्म का ये गाना।

0: मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम किया है कि वो कहते हैं ना कि प्यास बुझ गई
1: जी।
0: उसका नाम है बीमल रॉय
1: जी,
0: गुरुदत्त
1: जी,
0: कारदार साहब, फिर सत्यन बोस, फिर शक्ति सामंता, फिर ऋषिकेश मुखर्जी, फिर एसपी ईरानी, फिर बी मित्रा
1: जी,
0: और फिर आईएस जौहर, वो भी डायरेक्टर थे
1: जी।
0: और किन किन के नाम गिनवाऊं, बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम फिलहाल मुझे याद नहीं हैं, लेकिन कई ऐसे भी डायरेक्टर आए जिनके साथ वाकई मेरी तमन्ना थी कि मैं काम करूं
1: जी।
0: वैसे तो मैंने बचपन से लेके अभी तक 60 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक आदि बचा होगा बेचारा
1: जिनके साथ बेचारा
0: कि जिनके साथ मैंने काम नहीं किया
1: जी।
2: दोस्तों आइए अभिनेत्री श्यामा की मशहूर फिल्मों पर एक नजर डालें। फिल्म मिर्जा साहिबा, खानदान, छोटी बहन, स्वर्ण सुंदरी, भाई भाई, छू मंतर, लाला रुख, दरवाजा, धूप छांव, भागवत महिमा, शबनम, निशाना, रूपलेखा, पतंगा, तकदीर, आसमान, ठोकर, मुसाफिर खाना वगैरह वगैरह। बाद की कुछ फिल्मों में अभिनेत्री श्यामा चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आईं, लेकिन उन फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की बारीकी से दर्शकों को खूब आकृष्ट किया। श्यामा की उस दौर की फिल्में हैं खेल खेल में, सेवक, अजनबी, नया दिन नई रात, हनीमून, सूरज और चंदा, कंगन, जिंदगी जिंदगी, पायल की झनकार वगैरह वगैरह। अभिनेत्री श्यामा चली गईं इस फानी दुनिया से, दे गईं फिल्मी दुनिया को खलिश और सन्नाटा। जब इंसान नहीं रहता तब वो हमारे आसपास और ज्यादा रहता है, उसके न होने का एहसास कचोटता है, दुख देता है। जब सुनी थी श्यामा जी की आवाज तो वे सामने थी, उन्हें छूकर उन्हें नमन किया था, लेकिन आज सिर्फ उनकी आवाज है, वे नहीं है हमारे साथ।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम चांदनी रातें में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। चलो साथियों, आप इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म ताज महल का गीत। इस गीत को सुनना चाहा था चरखीजादी हरियाणा से नम्रता, खुशबू, खुशदीप और परिवार के सभी सदस्य। रघुनाथपुरा जिला गंगा नगर से हैं। राजस्थान से लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। लक्ष्मणी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी यह नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। सुनावत से हैं शेख मुसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बालकरण वर्मा, अंजनी, राजीव वर्मा, ज्योति, प्रहलाद वर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल जयवीर, डॉक्टर अमनदीप का से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। मुजफ्फरनगर यूपी से हैं रशीद मंसूरी, आयन मंसूरी और जिशान मंसूरी। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि और कृष्णा। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, ठाकुर साहिब। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद, सुहेल हसन, अनल, यशफ। सिकंदर राव से हैं मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। मुंगी पैठन महाराष्ट्र से हैं बाबा साहेब कंगनकर, साखरबाई, परमेश्वर, श्रावणी, कंगनकर परिवार से। कुरुक्षेत्र से हैं अनिता, अरुणा, चेतन, सुलोचना। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जय छिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल। जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश, चंदन, अंकुश। लाकू कॉलोनी लाहौरू हरियाणा से हैं बिल्लू सिंह चंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार। मधुबनी बिहार से हैं एमडी सबीर, एमडी साजिद, जाहिद और साहिद। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना। और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप। आप सभी ने सुना फिल्म ताजमहल का ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम ले रहे हैं फिल्म सागर से, जिसे सुनने के लिए आप सभी ने फरमाइश की है। मोहल्ला हलवाई शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, रासाजदा रानी और हिना कौसर।
कंवर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन एमपी से है परवीन श्रीमाली मीना श्रीमाली। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी सौरभ और सायना इनके साथ हैं निवान शर्मा। राजेश साबले पाटिल राजदीप राजेश राजश्री और शीतल सभी हैं छत्रपति संभाजी नगर से। पटेल नगर मलोट से हैं रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी गगनदीप और आरजू। पद्मा टाकीज नेपान नगर मध्य प्रदेश से हैं।

तापसी हैं सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु, नुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत रिफअत जहाँ, नुजहत जहाँ अनाज, साजिया, शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। जनकपुरी महासानपुर से हैं जॉन डिकैस्टो, रोजी, पल और विलिस। ततरेंगी भाटापारा से हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। आप सभी की पसंद पर फिल्म सागर का ये गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: लत तो लगेगी ही क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
2: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
1: ऐसा देश है मेरा हर दूसरी और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा हर दूसरी और चौथे शनिवार को।
2: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
3: चलिए साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं फिल्म कर्ज का ये गीत। इसे सुनने के लिए आप सभी की फरमाइश आई है। अनारकली बाजार से जगराओं पंजाब से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका गाव्या, सुच्चा सिंह, विनोदपुरी, जयपाल यादव और मलकापुर महाराष्ट्र से हैं शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीक धाड़े, नीना जी और स्वप्रीन। कोका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरस, अनिल, अजीत, आयुष और नंदनी। धमधा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि। बांडीवाला फजिलका पंजाब से हैं क्रियांश बगड़िया, योगेश, ओम, बेबी गरिमा, रजत और मनीष चौधरी। पटिंडा रोड मंडी डवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लक्की, तानिया। गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से हैं प्रेम सहारन, मोनिका और मनीष। मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, आजमा, दीपक और अनुश्री। मोहम्मद ख्वाजा रिजवानुद्दीन, मोहम्मद खजा फसीउद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया। मोहम्मद फरहान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग हैं सहारनपुर से। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू, सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या। कमल बालूजा, मधु, सागर और सतना एमपी से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा आखातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारीमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आजमा खातून अंसारी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मिराज इन्हें सभी आजाद नगर अक्सर हरिद्वार से। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाई जान, भाई राज कुमार बुड़ाना और दामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश, जगताप। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कर्ज का ये गीत।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान दी।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म कर्ज का गीत। अगला गीत आप सभी की पसंद पर, फिल्म दूरियां से। जिला खरगोन सनावर से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मुसा भाई जान, भाई राजकुमार बुड़ाना, और दामानगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप। गोविंदपुरा सीकर सिंह, दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत, मोहम्मद अजीज अनाधा, यह है बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी राध्या साहुल, छत्तीसगढ़ से। महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। तिरुपति नगर नांदूरा से संतोष वसाने, उषा वसाने, ऋषिकेश, अनिकेत, सागर कटक। नासिक से हैं विशाल गवली, सोनाली, समर्पण, भक्ति, अनवर साबरी, सन्नो मुदस्सिर, मुजक्किर और जरीफ अंसारी। मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहानकर, निर्मला, विशाल नहानकर, गम्हरिया जमशेदपुर से हैं विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित और बेबी गर्वी। बुल्डाना इस्लामपुर से हैं महाराष्ट्र से सहदेव दमोदर, शशिकला दमोदर, सुमेध कुमार, साधना, पवन और पाटिल। गांव उगाना जिला अंबाला हरियाणा से हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्य। गगनदीप थाम्पी, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी मामिका और वाणी थांती, ये सभी हैं नवाशहर पंजाब से। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। पलेरा टिक मगड़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष। कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखिंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। महाना प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान, मास्टर जिव्यम, दिग्दर्शन भाई। लालगिरी गोस्वामी, हिमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। सदर बाजार कुरावली से हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता, निखिल और तन्नवी। हिल स्टेशन खंडाला से हैं आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे, विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति और वैभव, ये सभी हैं बीड शहर महाराष्ट्र से। नेहरू चौक पैंठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद, सोनल, बेबीसिया। जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। जिला पटियाला पंजाब से लिखते हैं सोमदत्त, कैरव, ज्योति, रानी, गुरमत और कौर, मनु। जिला पटियाला पंजाब से आप सभी ने सुना चाहा है फिल्म दूरियां का ये गीत।
1: चिक्कड़ तुक्कड़ भंबे भो 80-90 पूरा सौ 100 का लोटा तीतर मोटा चल।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दूरियां का ये गीत, और अगला गीत है फिल्म पारस मनी से। इसे सुना है, सुनने के लिए आपने हमें SMS भेजा है। वेडिंग खेड़ा से हैं, पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। महाराष्ट्र से हैं रुपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रतेश और पूरा संघई परिवार। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू, डब्बू, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्नवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, मेहर अरोड़ा, ममता, कृति, भूमिका। दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। जिला खरगोन मध्य प्रदेश से त्रिलोक चंद वर्मा, भागवत, अभिषेक, सीमा, अमित, सचिन, समर, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से विक्रम कंडवासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युधव कंडवासरा। ग्राम बेहरामपुर टैमा, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर त्रिलोकचंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा, डॉक्टर अमित, सचिन, मास्टर समरराज, बीबी आरोही, अशिका, अंजलि, श्वेता, पटियाला से हैं बत्ता परिवार, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। किरणपाल बुम्बक से हैं तेजपाल, कृष्णपाल, सुमन, पूनम, सोनिया, रोशनी देवी और भगत सिंह बुम्बक। बबूरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर सिंह मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, गुमहरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहानकर, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत, प्रिंस एकांश और अर्जुन। गांव चहलदा बागपत से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया। रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, परमीन, युगम, वीरेन और मनकीरत मनराज। दतरेंगी के हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। गांव मरादगढ़ से हैं रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश व भुवेश कुमार कंबोज, पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, महक, सुनीता रानी, आरजू, हंसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव, बंटी और खुशदिल परिवार। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा और अनस और रेहान, आप सभी की पसंद पर फिल्म पारस मनी का ये गीत।

साथियों, कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म हाथ की सफाई से, और इसे सुनने के लिए आप सभी की फरमाइश है। जवाहर नगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंद किशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, जंदली, बाला साहेब, रामनिवास, धनजय और बीपी कुलथे। विनोदपुरी वीपी, रंजू, अशोक, सुशील, बीके, कैलाश, नीलम, रामा, पाली, सुनील और वीके पुरी। रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल, ये सभी हैं कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से। गांव सिली कला, जिला यमुनानगर, हरियाणा से हैं जय सिंह कंबोज, विजयंत सिंह कंबोज, रिदम निश्चय और जयपाल धीमान, और इनके साथ हैं खुर्शीद जमरोड़ी। जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार और भानु प्रिया। लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा, स्वप्रील और रक्षिता, ये सभी हैं नगर यवतमाल महाराष्ट्र से। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर और सतना एमपी से, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक, माही मलिक। झारखंड सिपाही साही गांव से हैं देवेंद्र तांती, राकेश, प्रकाश, निशा, कुमारी, रेशमा, दीपाली और देवेन से। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुदासु, अर्णव और सत्यम, ये सभी हैं पाकुड़ झारखंड से। घोड़ागाछी पश्चिमी बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, ये सभी हैं हिसार से। आप सभी की पसंद पर हम सुना रहे हैं आपको फिल्म हाथ की सफाई का ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें
1: एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। समय है हिंदी में समाचारों का। इन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिलीज करेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
3: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
2: Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. External Affairs Ministry today summoned Shah Jade Affair of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security, and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The Shah Jade Affair was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operating in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France on Sunday, the spotlight is on India's remarkable startup journey over the past 12 years. From around 350 recognized startups in 2014, India has emerged as the world's third largest startup ecosystem with over 2,35,000 DPIIT recognized startups and 131 unicorns. The 19th Mumbai International Film Festival, MIFF 2026, a week-long celebration of documentary, short fiction and animation cinema, is all set up to begin on Monday. Addressing a curtain raiser press conference in Mumbai today, Managing Director of National Film Development Corporation, NFDC, Mr. Prakash Magdum, informed that the competition section will feature 144 films, including 52 international and 92 national entries. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-final of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Suyu in a one-sided quarter-final clash today. Sindhu will face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final tomorrow morning. And that is the end of this news bulletin.
4: एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि की ठीक 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सभा अभी ही संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।